ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि। तदनुसार 28 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार हिंदी में होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए

0: ये सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना का पहला पुष्प अर्पित करते हैं मातृभूमि के चरणों में।

भटक गया है मन संसार में, थक गई हर एक चाह, सिमरन कर ले मन मेरा, अब यही है सच्ची राह। माया के इस झूठे मेले में खो जाएगा अभिमान, नाम की ज्योति जलाते ही मिल जाएगा सच्चा ज्ञान। धन दौलत रिश्ते सपने सब हैं पल दो पल के मेहमान, नाम सहारा बन जाएगा पार लगाएगा भगवान।

सच्चे हृदय की भक्ति गिरे हुए को ऊपर उठाती है, मूर्ख को विद्वान, आचारहीन को पवित्रतम और पतित को पावन बनाती है। सुख धन से नहीं धर्म से होता है। सुखी वो होगा जिसके जीवन में धर्म होगा, त्याग होगा, जिसके मन में भक्ति होगी और प्यार होगा।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने सोनू निगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम प्रकाश किरण का। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं मुकुंद माला से पाठ।
1: श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन निवासे त्यालापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंद।
2: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दयानिधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
1: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु

0: दात। हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को ना भूलूं।
1: कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशत मानसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते।
0: हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।
1: भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुत दुहित्रिकलत्र त्राण भारावृतानां विषम विषयतो ये मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुत दुहित्रिकलत्र

0: भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्।
1: भव सागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।

0: सरसि जदिश देवे तावकी भक्ति रेका, नरक भिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्। भवजलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयम्, कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वम्। सरसि जदिशि देवे तावकी भक्ति रेका, नरक भिदि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्।
1: हे चित्त, तू ये डर मत रख कि इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं किस तरह पार कर सकूंगा। यदि कमल से नेत्रों वाले और नरकासुर का नाश करने वाले देव में तेरी अनन्य भक्ति होगी तो वो तुझे जरूर पार लगाएगी।
2: मुकुंदमाला से पाठ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण के अंतर्गत। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। खेती की बातें कार्यक्रम में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर UD गुप्ता। स्वास्थ्य चर्चा की जाएगी बांझपन कारण और उपचार विषय पर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर परिणीता बंसल और समय रहेगा 7:10 का। 7:30 आप सुन सकेंगे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रस्तुत किया जाएगा 8:45 पर। इसके अलावा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन सकेंगे 9:25 पर।

साथ ही सुबह 10 बजे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुरसरिता। लखनऊ केंद्र से प्रसारित सामयिक चर्चा सुनी जा सकेगी सुबह 9:15 पर। 9:45 का समय रहेगा कार्यक्रम लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे करण सिंह लोधी और साथी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुबह 10:30 सुना जा सकेगा ख्याल गायन। कलाकार होंगे पंडित सी आर व्यास। आप प्रस्तुत करेंगे राग गुर्जरी तोड़ी और ठुमरी राग मिश्र कोशिया पर आधारित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात के अंतर्गत। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया जाएगा और इसका प्रसारण समय रहेगा सुबह 11:00। 11:30 सुना जा सकेगा मन की बात कार्यक्रम संस्कृत में। लोकमंजरी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दोपहर 12:00। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा गोवर्धन लीला पर आधारित नौटंकी। नई फिल्मों से फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा नए तराने। हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता अपना कार्यक्रम बाल मंडल सुन सकेंगे आज दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में बच्चों को रोचक जानकारी दी जाएगी आकाशीय बिजली के विषय में। साथ ही चर्चा की जाएगी क्या ज्यादा जरूरी नंबर या ज्ञान। इसके अलावा हमारे नन्हे श्रोता सुन सकेंगे बाल मेहमान नियति सिंह से की गई भेंटवार्ता और बाल गीत। समय ध्यान रखिएगा दोपहर 1:15 का। और दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएंगी कुमार अपूर्व सिंह की गाई चंद गजलें।

आज के अतिथि। दिन में 2:30 पर आप सुन सकेंगे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी भेंटवार्ता डॉक्टर टी शैथिन शिवा सुब्रमण्यम से नीरज जैन की बातचीत। गीत गुंजन कार्यक्रम सुना जा सकेगा 3:00। श्रोताओं, सुर संध्या कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 5:10 पर। युवावाणी कार्यक्रम में आज 5:30 हमारे युवा श्रोता सुन सकेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना पर चर्चा। साथ ही वार्ता, युवा शक्ति से पूरा होगा स्थायी भविष्य का सपना। ग्रामीणलोक कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 6:00 का और 6:30 सुनेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल। विविध क्रम के अंतर्गत आज 7:10 पर सुनेगा पंडित विद्या निवास की मिश्र की वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम सुना जा सकेगा 7:30 और 8:00 सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने नए पुराने। रेडियो स्कूप राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:30 और 10:00 आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय रविवार स्तरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति होंगे। तो ये थी कार्यक्रमों संबंधी जानकारी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस खान का आज का प्रसंग।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राज

राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता, जिसका विषय है डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन।
1: किसान भाइयों, दूध की बढ़ती कीमतों एवं मांग के कारण आम आदमी का रुझान डेयरी पशुओं को व्यवसाय का रूप देने की तरफ गया है। लंबे समय तक पशुपालन कृषि के सह व्यवसाय के रूप में पनपता रहा है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से इसे अलग से व्यवसाय का रूप मिलना शुरू हुआ है। डेयरी व्यवसाय की सफलता के लिए पशुओं के चुनाव पर ध्यान देना आवश्यक है। आमतौर पर एक एकड़ भूमि पर एक गाय या भैंस रखी जाती है।

परंतु यदि भूमि उपजाऊ है तो यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। संख्या के निर्धारित करने के उपरांत पशुओं की किस्म जैसे भैंस, देसी गाय या संकर गाय के विषय में निश्चय करना भी आवश्यक है। यदि हरा चारा व दाना भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में संकर गाय को रखना बेहतर रहता है। यदि हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो और सिर्फ भूसे या पुआल पर ही पशु रखने हों तो ऐसी स्थिति में देसी गाय या भैंस का रखना ही ठीक रहता है। किस्म के चुनाव के बाद नस्ल का चयन भी आवश्यक है। बेहतर तो यही है कि फार्म पर एक ही नस्ल के पशु रखे जाएं। एक से अधिक नस्ल के पशु रखे जाने पर पशुओं की कीमत कम मिलती है। नस्ल का चुनाव उसकी उपलब्धता, लोकप्रियता एवं कीमत पर निर्भर करता है। उत्तरी भारत में भैंस की मुर्रा, नीली रावी तथा भदावरी आदि नस्लें, गाय की साहीवाल, हरियाणा थारपारकर, राठी, मेवाती आदि नस्लें तथा संकर गायों की जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन तथा ब्राउन स्विस से उत्पन्न गायें आसानी से मिल जाती हैं। ये पशु बड़े बड़े डेयरी फार्मों जैसे इज्जतनगर, पंतनगर, करनाल, हिसार तथा लुधियाना आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। दुधारू पशु खरीदते समय पशु में मुख्य गुण जो देखे जा सकते हैं वो हैं, दुधारू पशु का स्वभाव सीधा हो, अत्यधिक सुस्त, तेज व भड़कीले पशु कम दूध देते हैं, पशु का पिछला धड़ भारी तथा अगला धड़ हल्का हो, गर्दन पतली, मस्तक चौड़ा, आंखें तेज, नथुने बड़े, कमर सीधी, पुट्ठे चौड़े एवं समतल, छाती का घेरा बड़ा, आयन बड़ा तथा आगे पीछे की ओर फैला हुआ, थन मध्यम एवं समान आकार वाले तथा दुग्ध सिराएं सुविकसित हों, पशु की टांगें छोटी व मजबूत हों, पशु की ऊंचाई कम तथा लंबाई अधिक से अधिक हो, दुधारू पशु को सामने ऊपर तथा बगल से देखने पर उसकी आकृति त्रिकोणात्मक दिखाई दे, सामने से देखने पर कुंवर के पीछे का हिस्सा तथा कंधे के पीछे त्रिकोण बनता हो, यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा पशु की छाती उतनी ही चौड़ी होगी, छाती चौड़ी होने पर हृदय तथा फेफड़े को पर्याप्त जगह मिल जाती है, ऐसे पशु अधिक शक्तिशाली तथा उत्पादनशील होते हैं। ऊपर से देखने पर कुंवड़ के ठीक पीछे के हिस्से तथा हुक बोन के बीच एक त्रिकोण बनता है, यह त्रिकोण जितना बड़ा होगा पशु की श्रेणी गुहा उतनी ही बड़ी होगी, श्रेणी गुहा में पशु के जननांग बड़े होंगे तथा ऐसा पशु अधिक प्रजननशील होगा। इन लक्षणों के अतिरिक्त पशु की पतली, मुलायम व चिकनी त्वचा, क्रियाशील कान तथा चारा देखते ही उस पर झपटना उसके निरोगी होने के मुख्य लक्षण हैं। पशु खरीदते समय कुछ बीमारी के कीटाणु पशुओं में मौजूद रहते हैं, परंतु उनमें बीमारी के लक्षण न उभरने के कारण वे अन्य पशुओं में भी संक्रामक बीमारी फैला देते हैं। अतः पशु कितना भी स्वस्थ एवं निरोग लगे उसे कम से कम 15 दिन तक अन्य पशुओं से अलग ही रखा जाए। यदि विदेशी नस्ल के पशुओं को फार्म पर रखना हो तो उन्हें देसी नस्ल के पशुओं से अलग रखना चाहिए। साथ ही विदेशी नस्ल के पशुओं के रखरखाव में कुछ विशेष सावधानियां रखी

जानी चाहिए, जैसे कि ये पशु आसानी से बीमारियां जो कि हमारे देश में प्रचलित हैं उनको आसानी से पकड़ लेते हैं, अतः इन्हें अन्य पशुओं से अलग रखना ही बेहतर रहता है। साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इन विदेशी नस्ल के पशुओं से हमारे देशी नस्ल के पशुओं में भी आ सकती हैं, अतः इनको अलग-अलग रखने से देशी नस्ल के पशुओं में इन बीमारियों को फैलने से बचाया जा सकता है। विदेशी नस्ल के पशु अधिकतर ठंडी जलवायु के होते हैं, अतः विशेषकर गर्मी के मौसम में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें नियमित रूप से नहलाया जाए जिससे कि गर्मी का उन पर बुरा प्रभाव न पड़े। कीमती पशु खरीदने के पश्चात पशुपालकों को उनका बीमा अवश्य कराना चाहिए। आजकल बीमा की सुविधाएं हर जगह उपलब्ध हैं, अतः किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी पशुपालकों का मनोबल नहीं टूटता। यदि फार्म पर अच्छी नस्ल के पशु रखने हों तो फार्म पंजीकृत करा लेना चाहिए। पंजीकृत फार्म के पशुओं की कीमत अधिक होती है तथा सरकार से ऐसे फार्मों को प्रजनन व उत्पादन संबंधी नीति निर्धारण में भी सहायता दी जाती है।

डेयरी व्यवसाय हेतु पशुओं का चयन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर यूडी गुप्ता की वार्ता। कार्यक्रम था खेती की बातें। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है, हमारी स्वतंत्रता है वहां, राष्ट्रभाषा है जहां। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। अगर आप आने वाली पीढ़ी को प्यार करते हैं तो पेड़ लगाइए और पृथ्वी को बचाइए। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 6:55 हुए हैं। कृषि पलों में आप सुनेंगे समाचार संस्कृत में और उसके पश्चात अंग्रेजी व हिंदी में। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

0: इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में नौवे डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु किमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कि आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। कल फिर
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche-Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a 3-day visit to

0: सुबह के 7:10 और 41 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर परिणीता बंसल की वार्ता, जिसका विषय है बांझपन, कारण और उपचार।
1: जैसे जैसे हमारा समाज विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई समस्याओं का सामना करते हुए जा रहे हैं, और इनमें से एक समस्या है बांझपन। हमारे समाज में एक भ्रामक स्थिति बनाई हुई है और मुख्यतः महिला को ही बांझपन के लिए जिम्मेदार मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है, बांझपन के लिए पुरुष और महिला समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 30% केसेस में महिलाओं में कमी पाई गई है, 32% केसेस में पुरुषों में कमी पाई गई है, और बाकी बचे हुए केसेस में दोनों में ही संयुक्त रूप से कमी पाई गई है। सामान्यतः विवाह के पश्चात अगर दंपत्ति साथ साथ रह रहे हैं और मिलते हैं और एवं कोई भी परिवार नियोजन का तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो करीब 6-7 माह में गर्भ ठहर जाता है एवं 5 में से 4 महिलाएं विवाह के पहले वर्ष में ही गर्भवती हो जाती हैं। अगर इन्हीं परिस्थितियों में दंपत्ति के साथ रहने के बावजूद यदि 1 से 1.5 साल के अंदर गर्भ नहीं ठहरता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को अपना पूरा चेकअप और जांच करवानी चाहिए। बांझपन के कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से हार्मोनों का संचार होता है, कैसे वो स्रावित होते हैं, कहां से, ये सारी फिजियोलॉजी समझनी होगी। हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि से FSH और LH नाम के हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि प्रति माह महिला के अंडाशय में से अंडा बनने की प्रक्रिया इन्हीं के प्रभाव में होती है, और हर माह महिला के अंडाशय पे उसके अगले महीने के आने से 14 दिन पहले के करीब फॉलिकल्स बनना शुरू होते हैं और उनमें से एक फॉलिकल फटकर उसमें से एक ओवम रिलीज होता है, जो कि गर्भाशय के अंदर नलों के माध्यम से जाता है, और गर्भाशय के इसके साथ साथ गर्भाशय के अंदर भी चेंजेस होते हैं और उसी के फलस्वरूप मासिक धर्म होता है। अभी संडे का नलों के माध्यम से बच्चेदानी में पहुंचना प्रजनन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी को देखते हुए हमें महिलाओं में बांझपन के कारणों को देखना होगा। किसी भी महिला में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बांझपन का है, वह ये है कि

0: जन्म जात विकृति ना हो गर्भाशय में, नलों में, अंडाशय में तथा बच्चेदानी के रास्ते में। और नंबर दो, अगर इसमें जन्मजात विकृति नहीं है तो इसमें अंडा समय से ना बनना महिला में, और अगर अंडा समय से बन रहा है तो अंडे का समय से ना फटना, जिसको कि ल्यूटिनाइज्ड अनराप्चर्ड फॉलिकल कहते हैं। अगर महिला के अंडाशय से अंडा बन जाता है तो एक अन्य कारण हो सकता है जिसके कारण उसको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो ये है कि उसकी बच्चेदानी के आसपास जो दोनों नले होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन के कारण उनमें बाद में जाले बन जाते हैं, जिसके कारण नले दोनों अंदर से चिपक कर आपस में ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिला में अंडा ठीक से बन रहा है लेकिन चूंकि उसके नले ब्लॉक हैं तो वो अंडा नलों से होकर बच्चेदानी के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरी चीज, बच्चेदानी के अंदर कोई खराबी ना हो, कोई रसौली, कोई ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि ना हो। बच्चेदानी के मुंह पर मोटा म्यूकस प्लग होना भी इसके लिए एक खराब बात है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम एक महिला को तथा उसके पुरुष साथी को दोनों का ही हमें टेस्ट करवाने होंगे और दोनों से ही हमें अलग अलग प्रश्न पूछने चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते हमें महिला से अलग प्रश्न पूछने होते हैं, पुरुष से अलग, और उसके पश्चात दोनों से हम साथ साथ प्रश्न पूछते हैं। उनकी कोई भी पुरानी बीमारी, ऑपरेशन, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तथा महिला या पुरुष का ये पहला विवाह है या दूसरा, और पुरुष के बारे में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो काम क्या करते हैं, उन्होंने कोई दवा वगैरह क्या ले रहे हैं, कितने सालों से ले रहे हैं, ये सब पूछना चाहिए। पुरुषों में सीमेन एनालिसिस करवानी चाहिए और महिलाओं का जैसे अंदरूनी चेकअप करने के पश्चात अगर बच्चेदानी ठीक है तो उनका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। एक टेस्ट जिसको हिस्टीरोसेल्फिंगोग्राफी कहते हैं, दूसरा डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड हिस्टीरोस्कोपी करवाया जा सकता है। हिस्टीरोसेल्फिंगोग्राफी में बच्चेदानी के अंदर एक डाई इंजेक्ट करते हैं और बच्चेदानी के एक्सरे लेते हैं। इस प्रकार से अगर महिला में कोई कमी आती है तो हमें उसके आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
1: बांझपन, कारण और उपचार, इस विषय में अभी आपको जानकारी दे रही थी डॉक्टर परिणीता बंसल। कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे देशगान। प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 7:18 और 5 सेकंड हुए हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतमबुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया

0: की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले पीसीबी सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए,
3: तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
4: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
1: कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
5: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:31 और 37 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम आसपास रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में अपने आसपास की गतिविधियों और सूचनाओं के अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चर्चा और इसके अलावा आपके मनोरंजन के लिए कुछ गीत। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आपसे, और हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गौरव दिवस की। जी हाँ, आज के दिन यानी 28 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश देता है। हर इंसान समानता, सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार रखता है। समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और साथियों आप जानते हैं कि सभी की सोच, सभी का स्वभाव, रुचियां और अनुभव एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। यही विविधता है और यही हमारे समाज को सुंदर और समृद्ध बनाती है।

साथियों, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसकी पहचान या उसके अलग होने के कारण भेदभाव करना उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गौरव दिवस हमें ये याद दिलाता है कि एक बेहतर समाज वही है जहां हर व्यक्ति को बिना किसी डर के अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिले, जहां लोगों को उनके व्यक्तित्व, उनकी योग्यता और उनके व्यवहार के आधार पर स्वीकार किया जाए, न कि किसी पूर्वाग्रह के आधार पर। हमारे भारतीय संविधान में भी प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम एक दूसरे के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखते हैं, तभी समाज में विश्वास और भाईचारा मजबूत होता है। साथियों, आज का दिन हमें ये भी सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। जी हाँ, किसी के विचार या जीवन हमसे अलग हो सकते हैं, फिर भी उसके प्रति सम्मान बनाए रखना ही सच्ची मानवता है। आइए इस अवसर पर हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, संवेदनशीलता और सम्मान को स्थान देंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और स्वीकार किया हुआ महसूस करे। तो साथियों, ये थे विचार आज के विशेष दिवस पर, और आज का दिवस है अंतर्राष्ट्रीय गौरव दिवस। आइए सुनते हैं एक गीत जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा।

आपने सुना ये गीत, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद भी आया होगा, क्योंकि ये तो सदाबहार गीत है जो हमारे मन को छू जाता है। इसके बोल हमें बहुत प्रेरित भी करते हैं। तो साथियों, इस गीत के बाद अब चलते हैं अपने आसपास की खबरों पर। तो ये है पहली खबर। फतेहाबाद और बरौली अहीर में आज पिलाई जाएगी खुराक। पोलियो उन्मूलन अभियान के तहत रविवार से फतेहाबाद और बरौली अहिर विकास खंड में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। अभियान के पहले दिन बूथों पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद अगले 5 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। CHC फतेहाबाद के अधीक्षक ने बताया कि ब्लॉक में 108 बूथ, 2 ट्रांजिट बूथ और 1 मोबाइल टीम के माध्यम से अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान की निगरानी के लिए 20 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। साथ ही सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर लाकर पल्स पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं।

चलते हैं अगली खबर की ओर और ये है 108 करोड़ से बनेगा ग्वालियर हाईवे पर नाला, डीपीआर तैयार। ग्वालियर हाईवे पर बनने वाला नाला 2 से 3 मीटर तक चौड़ा होगा। इस नाले से आसपास की 20 कॉलोनियों की नालियों को कनेक्ट किया जाएगा और इससे संबंधित कॉलोनियों में जलभराव की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वर्षों तक लोगों को मौसम के बाद जो जलभराव की समस्या होती है बारिशों के बाद, उसमें परेशानी नहीं होगी। तो खबर को विस्तार से बताते हैं कि ग्वालियर हाईवे पर जल्द ही जलभराव की समस्या दूर होने जा रही है। ककुआ से रोहता नगर तक नाला निर्माण होगा। 108 करोड़ रुपए से बन रहे नाले की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो गई है। जल निगम निर्माण शाखा के इंजीनियरों की नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई। एडीए नाला निर्माण कराएगा और नाला निर्माण को लेकर लंबे समय से क्षेत्रीय लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही बताना चाहेंगे कि ग्वालियर हाईवे पर ठीक तरीके से जल निकासी नहीं हो पाती है। जरा सी बारिश में हाईवे और सर्विस रोड पर पानी भर जाता है। कुछ हिस्से में नाला बना हुआ है, इसका ठीक तरीके से सफाई नहीं हुई है और ककुआ से रोहता नहर तक नाला निर्माण होना है। लंबे समय से ग्रामीण इसके लिए मांग कर रहे थे।

शहर में आज 3 घंटे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, आज यानी रविवार को शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जो कि 3 घंटे तक रहेंगे। लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट से सुबह 10:20 पर राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर से हाथरस के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:55 पर वापस शहर पहुंचेंगे। कमिश्नरी सभागार में लोक निर्माण विभाग आगरा मंडल के नए और पुराने कार्यों की समीक्षा करेंगे, फिर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम 4 बजे वायुयान से आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए शनिवार को दिनभर तैयारियां चलती रहीं और हाथरस में मुख्यमंत्री योगी सलेमपुर औद्योगिक आस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो 548 करोड़ रुपए की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 88 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा 27 लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे।

नीट यूजी के छात्र फीस वापसी के लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं। 21 जून को दोबारा हुई इस परीक्षा के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अब तक फीस वापसी के लिए आवेदन नहीं कर सकने वाले

में आवेदनों को पूरा नहीं भर पाने वाले या नो रिफंड का विकल्प भरने वाले छात्रों को फीस वापसी के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। छात्र अब 30 जून को नए सिरे से फीस वापसी का आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी से बैंक का ब्यौरा मुहैया कराने को कहा गया है। एनटीए ने ये पहल तब की है जब छात्रों की ओर से फीस वापसी का विंडो फिर से खोलने की मांग उठ रही थी। फीस वापसी के लिए अब तक लगभग 19 लाख छात्रों की ओर से आवेदन आए हैं, जबकि परीक्षा के लिए 22,89,000 छात्रों ने आवेदन किए थे। ऐसे में 3 लाख से अधिक छात्रों के आवेदन नहीं मिले थे। एनटीए का मानना है कि परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहने के चलते ये छात्र आवेदन नहीं कर पाए होंगे। ऐसे में इन्हें फिर से एक मौका दिया गया है। आस्था और सेवा की त्रिवेणी एक बार फिर ताजनगरी से कश्मीर की वादियों तक बहने को तैयार है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने वाले देशभर के लाखों श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आगरा के सेवादारों ने भी कमर कस ली है। यात्रा मार्ग पर शिव भक्तों के ठहरने और भोजन के लिए आगरा की ओर से एक महीने का विशाल शिविर लगाया जा रहा है। इसी सिलसिले में शनिवार को आगरा से श्री शिव शक्ति अमरनाथ सेवा समिति की ओर से आवश्यक खाद्य दिए गए।

दिल्ली एनसीआर और कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में शनिवार शाम 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भी इसके तेज झटके महसूस किए गए। अभी जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप शाम 7:04 पर आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जॉर्म से 43 किलोमीटर दक्षिण में जमीन की सतह से 215 किलोमीटर नीचे था। वहीं पाक के बलूचिस्तान में शुक्रवार से शनिवार तक मध्यम तीव्रता वाले 5 भूकंप आए। 4.3 से 5.2 तीव्रता वाले भूकंपों में 5 लोगों के घायल होने की सूचना है।

नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा में अपनाए गए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम अब भविष्य की सभी नीट परीक्षाओं का स्थायी हिस्सा बनेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने फैसला लिया है कि पुनर्परीक्षा के दौरान लागू किए गए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल आगे भी जारी रहेंगे। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने और पेपर लीक या अन्य अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ये तैयारी की जा रही है। मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 21 जून को संपन्न नीट यूजी पुनर्परीक्षा में अपनाए गए बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे को सफलता की अहम कड़ी माना है। अब सुरक्षा केवल परीक्षा केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि प्रश्न पत्र तैयार करने के शुरुआती चरण से लेकर छपाई, परिवहन, भंडारण और परीक्षा समाप्त होने तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसी क्रम में प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में सबसे अहम बदलाव किया गया। प्रश्न निर्माता, मॉडरेटर, अनुवादक और अन्य गोपनीय विशेषज्ञों को परीक्षा से लगभग 20 दिन पहले गुप्त एवं सुरक्षित परिसर में रखा गया। उनके मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, स्मार्टवॉच और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध रहा। उन्हें परिवार या बाहरी लोगों से संपर्क की अनुमति नहीं थी और केवल अधिकृत अधिकारियों को ही उस परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई। परीक्षा सम्पन्न होने तक वे उसी सुरक्षित परिसर में रहे।

प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा आगरा। तेज धूप निकलने और लू चलने से अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। तेज धूप और लू से लोग दिनभर परेशान रहे। शनिवार को आगरा का दिन का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। शाम को भी गर्म हवा चलती रही। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है

कि 3 दिन तक तेज धूप निकलने के साथ ही लू चलेगी। 3 से 4 दिन में मानसून की बारिश होने की संभावना है। सुबह 7 बजे से धूप तेज होती गई। सुबह 10 बजे के बाद गर्म हवा चलने लगी। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे के बाद धूप तेज होती गई, जिससे उमस बढ़ गई। धूप में कुछ देर खड़े रहने पर चक्कर आने लगे। इससे अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को भी गर्म हवा चलती रही, रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिन तेज धूप निकलने के साथ ही लू चलेगी। 30 जून से प्रदेश में वर्षा शुरू हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 3 से 4 दिन में दस्तक देने की संभावना है। मानसून संबंधी ही ये खबर आगे हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा भी कि उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में इसकी उत्तरी सीमा सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। यूपी में अगले 2 दिन के दौरान भीषण लू चलने की संभावना है। यहां तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। और साथियों, आज की अपने आसपास की इन खबरों के बाद हम आपको सुनवाते हैं एक गीत किशोर कुमार की आवाज में।

आसपास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, गीत के बाद हम आपको जानकारी देना चाहेंगे गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में, और उसके बाद फिर सुनाएंगे आपको एक और गीत। तो ये जानकारी आपको देते हैं, सूचनाएं हैं, और ये पहली सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना कासमपुर जनपद एटा से। ये सूचना है वंदना के संबंध में। वंदना पुत्री मनोज कुमार, निवासी ग्राम मोर्चा नहर, थाना राजा का रामपुर, जनपद एटा। वंदना दिनांक 3 अप्रैल 2026 से लापता है। वंदना की उम्र लगभग 20 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 2 इंच, शरीर सामान्य और रंग गोरा है। इनका चेहरा गोल और आंखें काली हैं। घटना के दिन इन्होंने कोको कोला रंग यानी मेहरून रंग का नाइट सूट पहना हुआ है और पैरों में हवाई चप्पल पहनी है। इनके पास इनका मोबाइल फोन है जिसमें 2 सिम लगे हुए हैं। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना

थाना कोतवाली नगर जनपद एटा से प्राप्त ये है अगली सूचना राघवेंद्र सिंह के विषय में। राघवेंद्र सिंह उर्फ सागर पुत्र रमेश चंद्र निवासी एमपी नगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा दिनांक 10 मार्च 2026 की दोपहर से लापता है। राघवेंद्र की उम्र लगभग 31 वर्ष है। इनका कद 5 फुट 5 इंच, मजबूत जिस्म और रंगे हुआ है। इनका चेहरा गोल है और ये आंखों पर चश्मा लगाते हैं। इनके बाल काले और घुंघराले हैं। घटना के दिन इन्होंने कत्थई रंग की शर्ट, नीला पैंट और काले रंग के स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं। इनके बारे में बताया गया है कि इनकी पत्नी से विवाद चल रहा है और मुकदमेबाजी चल रही है। इनके बारे में कोई सूचना यदि आपको मिले तो कृपया थाना प्रभारी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा को सूचित करें।

थाना कोतवाली नगर जनपद एटा से प्राप्त यह अगली सूचना है सचिन के विषय में। सचिन पुत्र सोहन लाल निवासी मोहल्ला कैलाशगंज थाना कोतवाली नगर जनपद एटा दिनांक 25 दिसंबर 2024 से लापता है। सचिन की उम्र लगभग 11 वर्ष है। इनका कद 3 फुट 5 इंच, पतला दुबला शरीर और रंगे हुआ है। इनका चेहरा गोल है और रंग सांवला है। इनके सीधे पैर में चोट का निशान है। घटना के दिन इन्होंने काले रंग की गर्म टी शर्ट पहनी हुई थी और नीले रंग की जींस पहनी हुई थी। इनके बारे में बताया गया है कि ये थोड़े गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव के हैं। सचिन के बारे में कोई सूचना यदि आपके पास हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना कोतवाली नगर जनपद एटा को सूचित करें।

थाना मलवान जनपद एटा से प्राप्त की अगली सूचना है राहुल कुमार के विषय में। राहुल कुमार पुत्र श्री नरेश चंद्र निवासी ग्राम आसपुर थाना मलवान जनपद एटा दिनांक 5 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। कद 5 फुट 5 इंच, रंगे हुआ और शरीर सामान्य है। इनका चेहरा गोल है। इनकी गर्दन पर 3 स्टार दाएं तरफ बने हुए हैं। घटना के दिन इन्होंने लोअर और टी शर्ट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई सूचना कृपया थाना प्रभारी थाना मलावन जनपद एटा को दें।

0: थाना बागवाला जनपद एटा से प्राप्त ये सूचना है श्रीमती मालती के विषय में। श्रीमती मालती पत्नी हेत सिंह निवासी कुतुबपुर थाना बागवाला जनपद एटा दिनांक 15 मई 2026 से लापता हैं। मालती की उम्र लगभग 31 वर्ष है। इनका कद 5 फुट, रंगोरा, शरीर सामान्य है। इनके बारे में अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोई सूचना यदि आपको श्रीमती मालती से संबंधित मिलती है तो कृपया थाना प्रभारी थाना बागवाला जनपद एटा को सूचित करें। और आइए चलते चलते सुनते हैं ये गीत।
1: मधुबन

0: अभी आप सुन रहे थे आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के

0: व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जांच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
7: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
8: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.0

1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप

0: दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल
1: जी। लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूजोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने

0: वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Margo. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. U.S. military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. A report.
3: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: Earlier yesterday, Prime Minister Modi visited the Botanical Gardens and attended a tree planting ceremony in Victoria. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. Following this, Mr. Modi interacted with the members of the Indian diaspora. The Prime Minister reached Victoria yesterday on a three-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the news on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.

0: writes that artificial intelligence has already taken away entry-level accounting, customer service, reporting and administrative support jobs. Significantly, in the first 10 months of 2025, AI was responsible for 11 lakh layoffs in the US tech sector. The paper adds that Anthropic, the present leader in AI technology, has called for stricter regulation of AI, warning of joblessness and even creation of bioweapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today, to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. U.S. military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत भी करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेनेजुएला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है। बचाव टीमें अब भी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफा शराकतदारी के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और बाहमी मुफादात के इलाकाई व बैन अलाकवी मामलात पर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। बाद में वजीर आजम मोदी रोश कैमन में कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजारत ने बताया कि भारतीय दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के दो जहाजों के साथ इन तकरीबात में हिस्सा लेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशल्स के तीन रोजा सरकारी दौरे पर हैं। इस दौरान वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करेंगे। यह दौरा भारत और सेशल्स दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती को तकवियत देगा और तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दोतरफा ताल्लुकात के मुश्तरका अज़्म को फरोग देगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए अक्षित विद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोटेनिकल गार्डन्स का दौरा किया और शजरकारी की एक तकरीब में हिस्सा लिया। उन्होंने बोटेनिकल गार्डन में जायंट टोर्टाइज इनक्लोजर का भी मुआयना किया। वजीर आजम सेशल्स के अपने तीन रोजा दौरे पर कल विक्टोरिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। यह माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़।

0: वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तला-ओ नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हुए नेपाल में फंसे हुए भारतीय यात्रियों की मदद की दरखास्तें मौसूल होने के बाद जारी की हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि कुछ भारतीय शहरी निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो चीन में दाखिल होने के लिए लाजमी वीजा और एंट्री परमिट हासिल किए बगैर नेपाल पहुंच गए। इसके नतीजे में कई यात्री नेपाल में फंस गए और उन्होंने वजारत खारजा से मदद तलब की। वजारत ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वह तमाम सफरी दस्तावेजात और इजाजतनामों की तस्दीक के बगैर सफर शुरू न करें, क्योंकि जरूरी इजाजतनामे हासिल होने से पहले रवानगी सफर के दौरान मुश्किल का बायस बन सकती है। वजारत ने यह भी कहा कि यात्री रवानगी से कबल इस बात की जरूर तस्दीक कर लें कि उनका टूर ऑपरेटर बाकायदा रजिस्टर्ड और मजाज है। वजारत खारजा की इस हिदायत का मकसद यात्रियों के लिए महफूज, आसान और बिला रुकावट रूहानी सफर को यकीनी बनाना और उन्हें गैर जरूरी परेशानी से महफूज रखना है। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहन अम्मार।
0: उमूर दाखिला और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज शाम गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रेकर आजमाइशी प्रोजेक्ट का बाजाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस नए इकदाम का मकसद खानदानों के लिए सेहत की निगरानी के निजाम को बेहतर बनाना, नीज सेहत और फलाही खिदमत तक उनकी रसाई को मजीद आसान बनाना है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद में बूथ सुदूर और शक्ति केंद्रों के इंचार्ज के लिए मुनक्कदा खसूसी चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो जमीनी सतह पर तंजीमी हिकमत अमली का जायजा लेंगे और मकामी पार्टी वर्करों से भी बातचीत करेंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 वर्षों में सेहत की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त की है और वह हर शहरी के लिए काबिल रसाई किफायती और मेयारी सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने और आलमी सेहत की कवरेज के वसी तर हदफ की सिमत काम कर रहा है। नई दिल्ली में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के नौवें एडिशन से खिताब करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी के मरकज में रोकथाम के साथ अपनी सेहत के नुक्ते नजर की बीमारी की देखभाल से तंदुरुस्ती और मुकम्मल तौर पर इलाज मुआलजे से जामे सेहत की देखभाल की तरफ मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद होने वाले 6 जांबाज फौजियों की अजीम कुर्बानी का सरकारी तौर पर पहली बार हाल ही में एतराफ किए जाने से मुतालिक मीडिया और सोशल मीडिया के बाज हलकों में गर्दिश करने वाली खबरों पर वजारत दिफा ने अपनी वजाहत पेश की है। वजारत ने इन खबरों को हकायक के मुनाफी करार दिया। वजारत के मुताबिक मुल्क ने शहीदों को अव्वलीन मौके पर खराज अकीदत पेश किया था। उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने गुज़श्ता बरस 11 मई को मुनक़दा सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 6 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया था। वजारत ने मजीद बताया कि इन शहीदों को बहादुरी के एजाजात भी अता किए गए थे, जिनका ऐलान गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को एक प्रेस रिलीज में किया गया था। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय फौज के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया था। वजारत दिफा ने कहा कि शहीदों के नाम तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नेशनल वार मेमोरियल पर कुंदा किए जाते हैं और यह कहना कि मुकर्रा प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया गया हकाइक के खिलाफ है। उसने मजीद कहा कि इस तरह के गुमराहकुन इतलात न सिर्फ हकाइक को मस्ख करती हैं बल्कि शहीदों के अहले खाना के लिए गैर जरूरी तकलीफ का बाइस बनती हैं। इसके साथ ही वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वालों के वकार को भी मुतासिर करती हैं। वजारत ने तमाम शराकतदारों से अपील की है कि शहीदों से मुतालिक खबरों की इशात में जिम्मेदारी और एहतियात का मुजाहरा करें और गैर मुसद्दका मालूमात की तशहीर से गुरेज करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी फौज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान नाजुक जंगबंदी एक बार फिर दबाव का शिकार हो गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फौजी

0: राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वजीर आजम मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहायश के लिए जरूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतजाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफे पर एक अहम खबर को शाया करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8 लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफे पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है, ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। सुबह के 8:45 हुए हैं। समय हुआ है कार्यक्रम गीतांजलि का, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। यह है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

आपने उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया कयामत से कयामत तक फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है सड़क फिल्म से। गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास ने। समीर के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास के बाद आइए अब सुनते हैं विनोद राठौड़ की आवाज में रानी मलिक का लिखा हुआ गीत, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने और फिल्म का नाम है बाजीगर।
1: Switch to SBI Premier Banking, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। गीत जावेद अख्तर का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है तेजाब

खलनायक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत में अलका याग्निक का साथ दे रहे थे साथी। गीत अमन बख्शी का लिखा हुआ था और संगीत बनाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही आज का गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे पुरानी फिल्मों से कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 9:25 पर। और इसके अलावा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। आकाशवाणी आगरा है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा लखनऊ केंद्र से।

0: लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून के आने का समय हो गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है, अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
4: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यद्य छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई है। और जहां तक मानसून की है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
3: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
4: देखिए, मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो, मैस्करेन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है द्राब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटीसाइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, और आने वाले दिनों में

0: एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके कारण कि इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
1: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में, और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं, और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
0: जी बिल्कुल, देखिए जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है, और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है अब 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी, और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है, हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार
1: जी
0: तो, लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना है।
1: सर, अलीनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
0: एलिनो का भी योगदान है, एलिनो एक्चुअली एक रिमोट फोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का, और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम वार्म फेज ऑफ इंसो या एलिनो बोलते हैं, और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एलिनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन बनता है और जिसके कारण की जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का दोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एलिनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एलिनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं, ये भी एक कारण है के कारण कि सामान्य से कम वर्षा होने की प्रायिकता जो है वो सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो कि समय समय पर इन चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर आगे का हम निर्णय लेते हैं।
1: सर, अगर हीट वेव पैटर्न की बात करें तो हमने देखा कि लगातार यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, तो क्या ये गर्मी और हीट वेव पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, या एक सामान्य तौर पर चल रहा है अभी?
0: तराई इलाकों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर फ्रीक्वेंसी और अवधि उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है, लेकिन जो प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक गर्म रहे इसके पीछे एक भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण भी है, वो ये है कि इस समय मतलब समर सॉल्स्टिस होती है 21-22 जून में, उस समय सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है और कर्क रेखा जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के पास से होकर गुजरती है, तो मतलब सूरज जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के सीधा ऊपर होता है, इस वजह से सर्वाधिक गर्मी इस समय वहां पर वो देता है। और इसके अतिरिक्त वहां का जो भूभौतिकी स्थिति है उसके कारण भी वहां पर हीट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ता है, तो ये कई सारे कारक हैं जो कि उसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करते हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान जो है वो बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा होता है।
1: पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप लोग?
0: देखिए जिस भी चीज की फ्रिक्वेंसी बढ़ना या घटना ये तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और ये अभी बढ़ी या घटी है ऐसा नहीं है, जैसे हमने बताया तराई इलाकों में घटी है, तो कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन ये एक्सेलरेट हो गया है और इस कारण जो उसके प्रभाव पहले काफी दिनों के बाद या एक जनरेशन के बाद

0: अब दिखाई देते थे, अब वो जल्दी सेम जनरेशन में उसी पीढ़ी में दिखाई देने लगे हैं और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं, या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है, सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना
0: जी
1: रहेगा?
0: जी बिल्कुल। देखिए, इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है, चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो, जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं। तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामूहिक चर्चा में आज आपने सुना, उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कुछ गीत पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम है गीत मंजूषा।

देवर, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का था जिसकी धुन बनाई थी रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है उजाला फिल्म से। गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

उजाला, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कार्यक्रम के अगले गीत में लता मंगेशकर का साथ देंगे मोहम्मद रफी। गीत के बोल अमन बख्शी के हैं।

मर्यादा फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण का गीत है और संगीत मदन मोहन का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ था ये गीत, जिसके बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने। गीत में आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम था नागिन। इस गीत के साथ ही आज का गीतमंच कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है लोक संगीत कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे करण सिंह लोधी और साथियों की आवाजों में कुछ प्रश्न लोक गीत। ये है पहली प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे करण सिंह लोधी का गाया ब्रज लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र जैन ने और संगीत भी दिया है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम है अखियों के झरोखों से।

हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में अभी आपने सुना आंखों के झरोखों से फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम का अगला गीत सजा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, और फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

0: एक दूजे के लिए फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आप तो ऐसे न थे फिल्म से। मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के बोल लिखे हैं निधा फाजली ने और धुन बनाई है उषा खन्ना ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, दिल तुझको दिया फिल्म से। गीत और संगीत राजेश रोशन का है।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना दिल तुझको दिया फिल्म का गीत। सुर सरिता कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा है कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है हीरो और गीत को गाया है रेशमा ने।

ये था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे गाया था रेशमा ने और फिल्म का नाम था हीरो। इस गीत के साथ ही आज का सुरसरता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप से। इस समय सुबह के 10:31 हुए हैं। समय हुआ है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित CR व्यास। आप प्रस्तुत करेंगे राग गुर्जरी तोड़ी और राग मिश्र कौशिया पर आधारित ठुमरी। तो आइए पहले सुनते हैं राग गुर्जरी तोड़ी। कलाकार हैं पंडित CR व्यास।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग गुर्जरी तोड़ी। आइए अब सुनते हैं ठुमरी गायन और आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मिश्र कौशिया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग गुर्जरी तोड़ी। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यह

ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही क्षणों में।

0: प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया,
4: क्या हुआ?

0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैक।
2: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
5: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक

खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी मां को

बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय

घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है

आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर

वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास

कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है? ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकमंजरी। श्रोताओं, लोकमंजरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नौटंकी गोवर्धन लीला। आलेख है डॉक्टर भारत सिंह चौहान का, प्रस्तुति है राजेश कुमार शर्मा की।
1: महाराज

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नौटंकी गोवर्धन लीला। आलेख था डॉक्टर भारत सिंह चौहान का, प्रस्तुति थी राजेश कुमार शर्मा की। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फेमस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं जुबिन नौटियाल जोनिता गांधी की, शब्द रचना है नवीन त्यागी की, संगीत रचना है संदीप गोस्वामी सूर्य विश्वकर्मा की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल, जॉनीता गांधी की आवाजों में फिल्म फेमस का ये गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म रेट से। आवाज है राहत फतेह अली खान की, शब्द रचना है मनोज मुंतशिर की और संगीत रचना है तनिष्क बागची की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रेड फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म तिश्नगी का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं दीपक अग्रवाल ने, धुन बनाई है गुफी ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे तिश्नगी फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में आर्टिकल 15 फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने और धुन बनाई है पीयूष शंकर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे यासिर देसाई आकांक्षा शर्मा की आवाजों में फिल्म आर्टिकल 15 का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म हमें तुमसे प्यार कितना है, आवाज है जुबिन नौटियाल की, संगीत रचना है राज आशु की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज में हमें तुमसे प्यार कितना फिल्म का ये गीत। शब्द रचना थी शब्बीर अहमद की, संगीत रचना थी राज आशु की। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बी प्राक की आवाज में पति पत्नी और वो फिल्म का ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे बी प्राक की आवाज़ में पति पत्नी और वो फिल्म का ये गीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर

0: में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जून में देसी साख्ता C-295 तैयारे की पहली परवास के साथ हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेशे रफत हासिल की है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस तरह के मजीद 40 तैयारे बनाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, MSME और एरो स्पेस सेक्टर को

0: एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुजाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफर को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़रई ज़मीन को केमिकल्स से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ज़मीन पर काश्त करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराह करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वज़ीर आज़म ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फरोग देने की अपील भी की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जल सयाम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वज़ीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीजन के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला जिलई तरक्याती कामों और अमन व अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वज़ीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2,478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीरशुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वज़ीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इतिहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत, इतिहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम जिला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मंडल

कार्यक्रम बाल मंडल सुन रहे मेरे प्यारे प्यारे छोटे बड़े साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को आपकी रेडियो दीदी शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय। जानते हैं वो क्या है? वो है, क्या ज़्यादा ज़रूरी, नंबर या ज्ञान? बच्चों, अक्सर हम देखते हैं कि परीक्षा आते ही सबका ध्यान बस नंबरों पर चला जाता है। कोई कहता है 90%, कोई कहता है 95%, कोई कहता है 100%, जैसे कि ये नंबर ही सब कुछ हों। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या सिर्फ अच्छे नंबर ही हमें जीवन में सफल बना सकते हैं? बच्चों, नंबर हमें ये बताते हैं कि हमने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया, लेकिन ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति को कैसे समझना और संभालना है। अगर किसी बच्चे को सिर्फ रटकर नंबर मिल जाएं, लेकिन उसे असल में चीज़ों की समझ ही ना हो, तो वो आगे चलकर ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे करेगा? दूसरी तरफ, अगर किसी बच्चे के नंबर भले ही थोड़े कम हैं, लेकिन उसे विषय की अच्छी समझ है, वो सवाल पूछता है, नई नई चीज़ें सीखता है, तो वही असली सीख है। क्योंकि बच्चों, वही ज्ञान है जो जीवन भर काम आता है। आज के समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार सभी इसीलिए तो सफल हुए हैं, क्योंकि उनके पास गहरा ज्ञान था, सिर्फ अच्छे नंबर नहीं। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें नंबरों से डरना नहीं है, बल्कि ज्ञान को अपना दोस्त बनाना है। पढ़ाई इसलिए करें कि हमें समझ आए, ना कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए। बच्चों, नंबर ज़रूरी हैं, लेकिन ज्ञान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नंबर सिर्फ कागज़ पर दिखते हैं, लेकिन ज्ञान पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है। तो चलो, आज से हम सब मिलकर ये ठान लें कि हमें नंबरों के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे भागना है। ज्ञान अर्जित करेंगे तभी हम अच्छे नंबर भी ला पाएंगे। तो ये थी आज की चर्चा, क्या ज़्यादा ज़रूरी, नंबर या ज्ञान? फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।

बच्चों, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट रोचक जानकारी पर। और आज रोचक जानकारी में हम प्रकृति के एक बेहद रोचक और रोमांचक दृश्य आकाशीय बिजली के बारे में जानेंगे। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है और आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, तभी अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई देती है, जिसे हम आकाशीय बिजली कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है बच्चों, बल्कि विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण भी है। दरअसल बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में टकराते रहते हैं, जिससे उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब ये आवेश बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो वे संतुलन बनाने के लिए अचानक एक तेज चमक के रूप में बाहर निकलते हैं, और यही होती है बिजली की चमक। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले बिजली चमकती है और उसके कुछ समय बाद गरज की आवाज सुनाई देती है। अब सोचो जरा, ऐसा क्यों होता है? सब चीजें विज्ञान से जुड़ी हैं बच्चों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, जबकि ध्वनि की गति उससे कम। इसलिए हमें चमक पहले और आवाज बाद में सुनाई देती है। ये बिजली इतनी शक्तिशाली होती है बच्चों कि इसका तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म हो सकता है। यही कारण है कि ये बहुत खतरनाक भी होती है। दुनिया भर में हर सेकंड लगभग 100 बार बिजली गिरती है, जो इसकी शक्ति और व्यापकता को दर्शाता है बच्चों। लेकिन बच्चों, जितनी ये सुंदर और आकर्षक लगती है, उतनी ही सावधानी भी है इसके साथ जरूरी है। बारिश के समय कभी भी खुले मैदान में खड़े नहीं रहना चाहिए और ना ही पेड़ों के नीचे शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बिजली अक्सर ऊंची चीजों को ही अपना निशाना बनाती है। ऐसे समय में हमें घर या किसी सुरक्षित इमारत के अंदर रहना चाहिए और धातु की वस्तुओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए। आकाशीय बिजली हमें ये सिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी है बच्चों। इसमें विज्ञान का ज्ञान भी छिपा है और रोमांच भी। इसलिए अगली बार जब आसमान में बिजली चमके, तो डरने की बजाय इसे समझ

0: बचने की कोशिश करें और सुरक्षित ही घर से बाहर निकलें, या फिर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लें। तो ये तो थी आज की रोचक जानकारी। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और करते हैं थोड़ी और बातें। तो आज मैंने इतनी सारी तो बातें आपसे की, अब हम थोड़ी सी बातें हमारी बेटियों के लिए करते हैं, हमारी बहनों के लिए भी करते हैं। बेटी जो अपने जन्म से ही खुशियां बांटती है, अपनों के सपनों को अपना बनाती है और बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर रिश्तों को संवारती रहती है, तो चलिए सुनते हैं ये भावनाओं से उत्प्रोत कविता बेटी का हिसाब क्या देते। स्वर है सोना के।
1: बेटी दी है रब ने, बेटी का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे तो तुम जवाब क्या देते। आज जिसकी आवाज को तुमने कदमों तले दबा दिया, रुख मोड़ दे आंधी का वो तुम अधिकार तो देते। नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। बिन नारी इस दुनिया में ना मैं रहूंगी ना तुम होंगे। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुझको विश्वास नहीं। नारी से हम तुम बने, इस सृष्टि में जीवन खिले, इस दुख भरे संसार में फिर प्यार की कलियां खिले। इतिहास को भी रचा दिया कुछ इस तरह के काम कर, जिसके कदम धरती ही ना आकाश में भी तुझको मिले। अपमान मत कर तू नारियों का, जिनकी वजह से तू चलता है। नारी ने तुझको जन्मा है, नारी की गोद में तू पलता है। मत सोचिए कि नारी को आगे बढ़ना नहीं आता है, मत सोचिए कि नारी को दुख से लड़ना नहीं आता है। नारी ने जब भी जन्म लिया इस अंधकार के जीवन में, हर मुश्किल से उसको लड़ना और संघर्ष और से टकराना आता है। जिसने नारी को प्यार दिया उसका आदर सम्मान हुआ है, जिसने नारी को अबला समझा फिर उसका भी तिरस्कार हुआ है। जिसने नारी को उपभोग समझकर उसका सिर्फ उपयोग किया, तो उसके प्रकाश के जीवन में काली रात सा अंधकार हुआ। आखिर इस आधुनिक जीवन में ऐसा क्यों समझा जाता है, लड़का और लड़की में फिर क्यों भेदभाव किया जाता है? आखिर लोगों के मन में सामान्यता क्यों नहीं आती है? लड़का जो हुआ तो खुश होते, लड़की को मारा जाता है। नारी सशक्तिकरण के नारों ने सबको फिर से बतलाया है, आज मेरे मन में फिर एक वही सवाल उठाया है। वेदों और पुराणों की जिसकी महिमा को गाते हैं, अब कोख में जब आती बेटी तो उसकी हत्या करवाते हैं। फिर से आज एक बेटी को पन्नी में करके फेंका है, लोगों ने आज इस दुनिया में इंसानियत को फिर से बेचा है। किया है पाप जो तुमने, भुगतना तुमको भी होगा, तो इस कर्म के बदले में मरना तुमको भी होगा। अपमान मत कर तू नारियों का, जिनकी वजह से तू चलता है। नारी ने तुझको जन्मा है, नारी के गोद में तू पलता है। इसी के साथ हम सबको सशक्त होना होगा और आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद।
0: तो बच्चों, अभी हमने सुनी कविता बेटी का हिसाब क्या देते। बहुत ही अच्छी सीख दी इस कविता ने हमें कि हमें लिंग भेद नहीं करना है, हमें लड़के और लड़की में भेद नहीं करना है, और ये हमें अपनी आज की पीढ़ी को सिखाना होगा। तो अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, मिलते हैं गीत के बाद।

0: बच्चों, स्वस्थ शरीर और शांत मन, ये ही हमारी जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इन्हें पाने का सबसे सरल मार्ग पता है क्या है? वो मार्ग है योग। योग केवल व्यायाम नहीं है बच्चों। कई बार लोग बहुत गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि अरे एक्सरसाइज है, हम क्यों करें। पर नहीं, ये सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। तो चलिए आज सुनते हैं हमारी बाल मेहमान नियति सिंह के द्वारा योग है जीवन का आधार।
1: नमस्ते दोस्तों, सुनो मेरी बात। योग से होती जीवन की शुरुआत। सुबह सुबह जब सूरज आए, सुनहरी किरणें संग मुस्कुराए, तब हम सब मिल योग करें, तन मन को मजबूत करें। योग नहीं है केवल व्यायाम, इससे मिलता है सच्चा आराम। शरीर बनता चुस्त और निरोग, दूर रहे सारे छोटे रोग। तड़ासन हो या वृक्षासन, हर आसन देता है नव जीवन। सूर्य नमस्कार जब हम करते, शक्ति से भरपूर हम रहते। गहरी गहरी सांसें लेना, व्यायाम का अभ्यास करना, मन को शांति, तन को बल, यही है योग का सुंदर फल। जब पढ़ने में मन ना लगता या कोई काम कठिन सा लगता, योग हमें एक चित बनाता, हर मुश्किल से पार कराता। बच्चे बूढ़े और जवान, सबके लिए योग महान। ना कोई बेड ना कोई दीवार, योग जोड़ता सबको हर बार। मोबाइल टीवी छोड़ो थोड़ा, खुली हवा से नाता जोड़ो। रोज कुछ पल योग में बिताओ, स्वस्थ और खुशहाल बन जाओ। योग सिखाता अनुशासन, मित्रता और मनन, क्रोध चिंता दूर भगाता, जीवन को सुंदर बनाता। पूरी दुनिया ने ये माना, योग है भारत का खजाना। हम सबको

0: पर है अभिमान बढ़ाता ये देश की शान। आओ मिलकर प्रतिज्ञा ये ले, रोज सुबह कुछ योग करे, स्वस्थ रहे और खुशियां पाए, नई उमंग से जीवन सजाए। योग है जीवन का उपहार, सेहत शक्ति और प्यार, यही संदेश मैं लाए हूँ आप सभी को सुनाती हूँ। रोज करे हम योग महान, स्वस्थ बनेगा हिंदुस्तान।
1: बच्चों, अभी आपने सुना हमारी बाल मेहमान यति सिंह को। अच्छा, यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट योग और प्राणायाम करेंगे बच्चों, तो आपका शरीर तो चुस्त रहेगा, मन भी एकाग्र होगा, पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। इसी कड़ी में सुनते हैं योग की महिमा गायत्री शर्मा द्वारा।
2: आप सभी को मेरी ओर से सीताराम। आगामी दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है एवं योग के प्रति सबको जागरूक करने के लिए हम भी इस कदम के लिए छोटी सी पहल कर रहे हैं एवं आप सभी को योग की महिमा समझाना चाहूंगी। चलिए जानते हैं। योग जीवन का वह अध्याय है जिसमें आत्मा का स्वस्थ वर्णन है। योग वह क्रिया है जिससे मनुष्य स्वयं के अंतर्मन से जुड़कर शून्य को प्राप्त कर सकता है एवं ब्रह्मेंद्री में वास करते उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष हमें यह याद दिलाता है कि शरीर का स्वस्थ होना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जीवित रहने हेतु वायु आदि का प्रयोग। योग केवल व्यायाम एवं आसनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योग तो प्रतिदिन की जाने वाली उस प्रार्थना जैसा है जो हम पर महादेव को द्रवित कर दे। आदि योगी को स्वयं की भक्ति प्रदर्शित करने का सुमार्ग भी योग ही है। योग केवल वैज्ञानिक लाभों से युक्त नहीं, अपितु आध्यात्मिक कड़ियों को जोड़ने वाला एक अहम तर्क है। तो क्यों ना हम स्वयं भी योग को अभ्यास में लाकर किशोर पीढ़ी को इसकी महत्ता समझाएं एवं प्रत्येक वर्ष 21 जून को हुए संकल्प की ओर एक और दृढ़ कदम बढ़ाएं। योग करें, स्वस्थ रहें, सशक्त बनें।
1: बच्चों, योग हमें अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच का पाठ पढ़ाता है। याद रखिए, योग है जीवन का आधार और योग की महिमा है अपरंपार। स्वस्थ तन और खुशहाल संसार, जो रोज योग अपनाता है वह निरोगी और ऊर्जावान जीवन पाता है। आइए इसी संकल्प ले के साथ आगे बढ़ते हैं कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। ये तो थी बात योग की, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: प्यारे बच्चों, समय जीवन का सबसे अनमोल धन है। जो समय एक बार चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना जरूर हमें सीखना चाहिए। आज जो समय आप पढ़ाई, नई चीजें सीखने, अच्छे संस्कार अपनाने और अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी में लगाएंगे, वही आपका सुनहरा भविष्य बनाएगा। मोबाइल, टीवी या बेवजह की बातों में घंटों बिताने के बजाय अपनी रुचियों को पहचानिए, किताबें पढ़िए, खेलिए, कुछ नया सीखिए और अपने माता पिता व शिक्षकों का सम्मान करिए। चलिए इसी कड़ी में बढ़ते हैं इसी संदेश के साथ बाल गीत देखो यूना समय गवाओ।

देखो यू मत समय गवाओ। तो बच्चों अभी हमने सुना ये प्यारा सा बाल गीत। बच्चों याद रखना, समय की कद्र करने वाला ही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हर नया दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि जो समय आज आप सदुपयोग करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। तो आओ आज ही संकल्प लें कि हम समय का सदुपयोग करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। चलते चलते में करते हैं बात पीवी नरसिम्हा राव की, जिनकी आज जयंती है। बच्चों भारत की एक ऐसे महान नेता जिन्हें हम आधुनिक भारत के आर्थिक सुधारों का जनक भी कहते हैं। जी हाँ, वो हैं पीवी नरसिम्हा राव। आज उनकी जयंती पर हम करेंगे उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बातें। चलते चलते, पीवी नरसिम्हा राव का जन्म बच्चों 28 जून 1921 को हुआ था। वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। बहुत ही शांत, सरल और विद्वान व्यक्ति। उन्हें कई भारतीय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। वे पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे बच्चों, और एक अच्छे लेखक भी थे। जब वो प्रधानमंत्री बने तब भारत आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि हमें जीवन में कभी हार माननी भी नहीं चाहिए। उन्होंने साहसिक निर्णय लिए और देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। बच्चों इन सुधारों से उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर बढ़े तथा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको एक नई दिशा मिली। इनका जीवन हमें सिखाता है बच्चों कि ज्ञान, धैर्य, ईमानदारी और सही समय पर लिया गया निर्णय किसी भी देश और समाज का भविष्य बदल सकता है। तो आइए आज हम भी पीवी नरसिम्हा राव के जीवन से प्रेरणा लें और मेहनत, शिक्षा और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उनको नमन करते हैं उनकी जयंती पर। अब ये तो बातें हो गई चलते चलते, फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी यात्रा में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसे एंजॉय किया होगा, चूंकि अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। इसी विश्वास के साथ कि आज की छोटी सी सीख कल आपके काम आएगी, आपकी नींव मजबूत करेगी, मैं आपकी रेडियो दीदी आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं अपूर्व सिंह की आवाज में गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं अपूर्व सिंह की आवाज में गजलें, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुमार अपूर्व सिंह की आवाज में गजलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Dhunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country

0: विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि यह भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं

0: निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्वकप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्वकप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के अतिथि। तो आइए सुनते हैं आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर टी सेंथिल शिवा सुब्रमण्यम से नीरज जैन की ये बातचीत।
3: आज के अतिथि मित्रों, इस कार्यक्रम में हम समय समय पर आपकी भेंट वरिष्ठ जनों से, तमाम उद्योगपतियों से, डॉक्टरों से और अपने अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे करवाते ही रहते हैं। और आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर टी सेंथिल शिवा सुब्रमण्यम जी को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, डिजिटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और भी तमाम सारी विधाओं में इनको महारत हासिल है। और इस समय आप एक निजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हम सुब्रमण्यम जी, आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: थैंक यू सर। नमस्कार सर।
3: सुब्रमण्यम जी ने तमाम सारे फील्ड्स में, देश विदेश के तमाम देशों में शोध और मैनेजमेंट, इनसे जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनसे आप जुड़े हुए हैं और आपने विभिन्न फील्ड्स में, चाहे वो फाइबर ऑप्टिक्स हो, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम हो या प्लाज्मोनिक हाइड्रोजन गैस सेंसर हो, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल्ड ई बाइक, डिजिटल स्पायरोमीटर, बहुत सारे फील्ड्स में काम किया है, तमाम सारे

0: इनोवेशंस किए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे, आपके बातचीत करेंगे, आपके व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करेंगे और आपने इन फील्ड्स में जो भी काम किया है उसके बारे में हम अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आप अपने बारे में, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में कैसे कहां यहां इस मुकाम तक पहुंचे।
1: थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सर।
0: जी,
1: मैं तमिलनाडु में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं बेसिकली
0: जी,
1: और स्कूलिंग और कॉलेज बीएससी फिजिक्स मैंने सेंट सेवियर्स कॉलेज तिरुनेलवेली में किया था। उसके बाद एमएससी फिजिक्स दयालबाग यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा में किया
0: जी,
1: और उसके बाद एमएससी का जो प्रोजेक्ट था मैं आईआईटी दिल्ली में फाइबर ऑप्टिक करंट सेंसर में, मेरे को मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है वहां पे प्रोफेसर चंद्रशेखर आईआईटी दिल्ली में होलोग्राफिक लेबोरेटरी में मैंने काम किया है
0: जी।
1: और एमएससी के बाद मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, रिसर्च एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने आईआईटी दिल्ली में मेरे को प्रोजेक्ट एसोसिएट ऑफ अपॉर्चुनिटी मिला था
0: जी।
1: और प्रोजेक्ट करते हुए मैंने गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग ग्रेट एग्जाम फिजिक्स के लिए मैंने तैयारी की थी
0: जी।
1: और उसके बाद फिर मैंने गेट एग्जाम में 1997 में फिजिक्स में क्वालिफिक किया था, ऑल इंडिया रैंक 140 बेसिकली।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: थैंक यू वेरी मच सर।
0: बहुत खूब।
1: और उसके द्वारा जो है एमएचआरडी फेलोशिप के द्वारा मैंने एमटेक आईआईटी दिल्ली में मैंने ज्वाइन किया था 1997-1998 में और एमटेक के बाद फिर मैंने इंडस्ट्री में 6 ईयर्स काम किया है और उसके बाद 2007 में मैंने हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शारदा ग्रुप में एज ए सीनियर लेक्चरर ज्वाइन किया
0: जी, जी।
1: और आई ऑलवेज यूज टू हैव अ पैशन टू एक्सेल इन माई फील्ड, कीप ऑन लर्निंग, keep on moving, keep on growing. Or in 2009, I got the opportunity to work in a Boeing project in IIT Kanpur under Professor Nishchal Kumar Verma of IIT Kanpur. In 2012, I registered for my PhD in hydrogen, plasmonic hydrogen gas sensing at IIT Delhi as a part-time student.
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: Thank you very much, sir.
0: और इस समय तो वैसे भी हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा की बात कर रहे हैं और सरकार भी इसके ऊपर काफी जोर दे रही है।
1: हाँ,
0: तो मैं अभी आपके प्रोफाइल में देख रहा था कि आपने हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम के बारे में भी काफी काम किया है, ग्रीन एनर्जी के बारे में काफी काम किया है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कुछ।
1: हाँ जी, सो माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन स्टार्टेड फ्रॉम माई पीएचडी व्हेन आई वाज डूइंग 2012 एट हाइड्रोजन गैस सेंसिंग। आई वाज हैविंग वेरी कीन इंटरेस्ट टू एनालाइज, टू रिसर्च, टू रिसर्च इन hydrogen gas sensing, which was supported by a project, DRDO supported project था basically. और 2020 में मेरा project complete हुआ था IIT Delhi में PhD और उसके बाद मैंने innovation start किया है। उस base जो मिला था मुझे hydrogen gas sensing का जो PhD में, उस basis को लेकर मैंने hydrogen e-bike जो concept मैंने develop किया था और industrial design patent भी मैंने file किया था।
0: ये जो आपका जो PhD ये hydrogen gas के ऊपर ही है?
1: Hydrogen gas sensing पे, plasmon technology based हाइड्रोजन गैस सेंसिंग था और डीआरडीओ सपोर्टेड प्रोजेक्ट था और आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ जॉइंटली मेरे रिसर्च वर्क के लिए पेटेंट फाइल किया था और पेटेंट पब्लिश भी हो गया था। थैंक यू वेरी मच सर। और उसके बाद फिर मेरा जो पीएचडी का जो जर्नल पब्लिकेशन है उसमें भी मेरे इंटरनेशनल जर्नल आरएससी एडवांसेस में मेरा हाइड्रोजन गैस सेंसिंग में पब्लिश हुआ था। उस बेसिस को लेकर मैंने हाइड्रोजन ई बाइक मैंने पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट मैंने फाइल किया था, वो ग्रांट हुआ था और मैंने सोचा था जब मैंने इनोवेशन किया था और पेटेंट फाइल किया था और दैट शुड सर्व द पर्पस ऑफ द नेशन और सोसाइटी को पहुंचना चाहिए था जो भी इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं,
0: निश्चित रूप से जो भी टेक्नोलॉजी है वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए।
1: हाँ जी
0: जी।
1: तो उस बेसिस को लेकर, उस विजन को लेकर मैंने जो है आईआईटी दिल्ली में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके एक इंडस्ट्री इंटरफेस आईआईटी दिल्ली डिपार्टमेंट में है, उनको मैंने अप्रोच किया था और उन्होंने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, एक्नोलेज किया था और उस प्रपोजल को लेकर उन्होंने इंडस्ट्री पार्टनर उन्होंने ढूंढा है और कम्युनिटी एनर्जी हैदराबाद में, कम्युनिटी एनर्जी करके लिथियम आयन बैटरी में एक्सपर्ट्स हैं, एमएसएमई स्टार्टअप है, वो अभी हाइड्रोजन डोमेन पर शुरुआत करी है उन्होंने और उस कम्युनिटी एनर्जी ने मेरा हाइड्रोजन बाइक को उन्होंने चूज किया है और जो मेरा हाइड्रोजन बाइक है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया है कम्युनिटी एनर्जी पे बेसिकली।
0: अभी आपने बात की कि हाइड्रोजन एनर्जी की बाइक के बारे में, तो हम लोग भी चर्चा सुनते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां आने की संभावनाएं हैं,
1: हाँ
0: इसके ऊपर बात हो रही है और कई देशों में आ भी रही हैं।
1: हाँ जी,
0: तो ये जो हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम ये कैसे काम करता है ये फोर व्हीलर या टू व्हीलर के लिए?
1: जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जो सिस्टम है, अगर मेरा हाइड्रोजन बाइक को अगर आप एग्जांपल लेंगे
0: जी,
1: तो हाइड्रोजन जो है इजीली स्टोर्ड इन मेटल हाइड्राइड फॉर्म में स्टोर किया जाएगा बेसिकली, और जो मेटल हाइड्राइड कैनिस्टर

0: हैं वो कनेक्ट होते हैं फ्यूल सेल में, और फ्यूल सेल वो जो है मोटर में कनेक्ट होते हैं, और जो हाइड्रोजन एनर्जी जो है फ्यूल सेल को कन्वर्ट करके, और एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और उसके द्वारा जो है हाइड्रोजन बाइक जो है आप मूविंग स्टेट में रहेंगे बेसिकली। ये जो साइकिल है वो बेसिकली अर्बन रोड्स में भी, रूरल रोड्स में भी, ट्रेन्स में भी, काफी तमाम जो प्लेसेस हैं, रगड़ रोड्स में भी ये चलने का फ्लेक्सिबिलिटी ये हाइड्रोजन बाइक है बेसिकली। ये जो इन्वेंट किया था वो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया, उस बेसिस पर उसको कंट्रीब्यूशन में करने के लिए मैंने सोचा था, उस बेसिस पर ही मैंने इनोवेशन किया था इस हाइड्रोजन बाइक को बेसिकली।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: और ये हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो नेट जीरो एमिशन के लिए ये बहुत फैसिलिटेट करेगी बेसिकली, और जो है क्लाइमेट चेंज के लिए फॉसिल फ्यूल्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगी ये ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, आम आदमी के जानकारी के लिए बात करें, तो जो अभी आपने बात की लो एमिशन की, तो लो एमिशन की जो अभी जो गाड़ियां आ रही हैं या जो ई बाइक्स या ई व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसमें और ग्रीन हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है?
0: क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल जो कहते हैं, जो फॉसिल फ्यूल का जो यूसेज होते हैं उसमें कार्बन एमिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, CO2 एमिशंस बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन है बेसिकली। उसको जो ग्रीन हाइड्रोजन अगर हम यूज करेंगे, इट इज नेट जीरो एमिशन बेसिकली, CO2 एमिशंस नहीं रहेगा बेसिकली। इट इज अ वर्सेटाइल एप्लीकेशन है बेसिकली, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा बेसिकली, ये फायदा है। इनिशियली जो है कॉस्ट हायर एंड पर है, लेकिन तमाम जो है जो पॉलिसीज बने हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अभी आ रहे हैं उसके द्वारा जो है ग्रीन हाइड्रोजन कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी बेसिकली।
1: निश्चित रूप से कोई भी टेक्नोलॉजी जब अपने शुरुआती दौर में होती है तो उस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस पर खर्च तो होता ही है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी शुरुआत में खर्चीली होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे यूज हम लोग हो जाते हैं तो फिर वो उसकी कॉस्टिंग कम होती जाती है।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो और ग्रीन हाइड्रोजन जो है सेफ मोड पे काम करेंगे, और इट इज हाईली वर्सेटाइल फ्यूल किया जाएगा बेसिकली, और नेट जीरो एमिशन के लिए ये बहुत फैसिलिटेट करेगी, और क्लाइमेट चेंज के लिए जब फॉसिल फ्यूल के द्वारा जो CO2 एमिशन है जो क्लाइमेट एनवायरमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं उसके द्वारा ये डिवाइड हो जाएगी बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन के।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इनोवेशन निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है फ्यूल के क्षेत्र में। वैसे भी जो जीवाश्म ईंधन है उसकी तो लगातार कमी होती ही जा रही है, और हमारी सरकार, केवल हमारी सरकार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ये जीवाश्म ईंधन इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ई बैटरी, ई बाइक या ई रिक्शा या इस तरह की जो चीजें आ रही हैं जो लो एमिशन हो या नो एमिशन हो, तो उस तरह की बात हो रही है।
0: हाँ जी
1: डॉक्टर साहब, मैं आपका देख रहा था तो आपने डिजिटल स्पायरोमीटर की कुछ काम किया है, ये क्या होता है ये?
0: सो डिजिटल स्पायरोमीटर बेसिकली जो है लंग प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक डिजिटल स्पायरोमीटर हमने डिवाइस किया है बेसिकली, और इसमें जो है नैनो फाइबर्स, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड सेंसर्स इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सेंसर्स के द्वारा जो है लंग प्रेशर को मेजरमेंट किया जाएगा डिजिटली, और अगर हम देखा जाएगा तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा फायदा जो इनोवेशन है, और होम में अगर पेशेंट है तो उनको कोई हेल्प, बिना हेल्प करे हुए ये अपने आप वो मेजर कर सकते हैं लंग प्रेशर को बेसिकली। और इसका जो हमने जो इनोवेशन किया है बेसिकली, मैं ऐसा को इन्वेंटर मैंने इसमें प्रोजेक्ट में था, और इस इनोवेशन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड जो इंटरप्राइजेस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट के द्वारा हमने MOU साइन किया है, और अभी इन प्रोसेस है इंडस्ट्री के लिए ट्रांसफर करने के लिए, इन प्रोसेस में है बेसिकली। ये नैनो टेक्नोलॉजी सेंसर्स हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर सेंसर्स इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, कॉस्ट इफेक्टिव है ये बेसिकली, मास प्रोडक्शन में किया जाएगा बेसिकली। इट कॉस्ट अराउंड 25,000 रुपीज बेसिकली, तो एक कॉमन मैन भी अफोर्ड कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली।
1: निश्चित रूप से जब तक टेक्नोलॉजी कॉमन मैन की रीच में नहीं होगी तब तक उसका कोई बहुत अच्छा या बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जी जी जी। ये फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में भी आपके कुछ पेपर्स में मैं देख रहा था, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स में आपका क्या काम है?
0: मैंने जो MSC प्रोजेक्ट किया था फाइबर ऑप्टिक करंट सेंसर, नॉर्मली जो हमारा कन्वेंशनल करंट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, तो मैंने जो यूज किया था अराउंड 1996 में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के अंडर में IIT दिल्ली में मैंने काम किया था, उस टेक्नोलॉजी थ्रू फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल को यूज करके हाउ वी कैन मेजर द करंट, हाई वोल्टेज लाइन में जो करंट जाते हैं, और फाइबर ऑप्टिक्स में जो फायदा है दैट नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट है बेसिकली। तो

0: कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, और फाइबर ऑप्टिक्स को जो हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज लाइन है उसको राउंड आउट करेंगे बेसिकली. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा इलेक्ट्रिक लाइन में, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है. उस मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा जो लाइट, जो फाइबर ऑप्टिक्स में जो लेजर लाइट जाएगी, उस लेजर लाइट को इन्फ्लुएंस करेंगे. उस लेजर लाइट के द्वारा जो है लाइट इज कन्वर्टेड इंटू करंट सेंसर, बेसिकली करंट में कन्वर्ट किया जाएगा.
1: जी,
0: ये जो प्रोजेक्ट है फाइबर ऑप्टिक करंट सेंसर में, जो मेरा अपॉर्चुनिटी मिला था जो काम करने के लिए है, ये बीएचईएल सपोर्टर, बीएचईएल हैदराबाद के सपोर्टर प्रोजेक्ट था बेसिकली. और बीएचईएल ने, इन्होंने इंप्लीमेंट भी किया है, उन्होंने फाइबर ऑप्टिक करंट सेंसिंग को अपनी हैदराबाद में प्लांट में बेसिकली.
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ जी,
1: ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है ये.
0: थैंक यू सर.
1: और निश्चित रूप से ये जो इनोवेशंस हैं यही प्रोग्रेस देते हैं साइंस को.
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: जी.
0: तो नाउ फाइबर ऑप्टिक्स का जो बहुत वर्सेटाइल एक्सपीरियंसेस, वर्सेटाइल एप्लीकेशंस है बेसिकली, और हाई बैंडविड्थ है बेसिकली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस, इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से दूर है बेसिकली इस टेक्नोलॉजी.
1: जी, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत सारा काम किया है, डिजिटल टॉयज के बारे में आपने एमएसएमई के माध्यम से बहुत कुछ काम किया है.
0: हाँ जी.
1: ये डिजिटल टॉयज का क्या फंडा है, क्या है?
0: हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, टॉयज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो है स्कीम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, और उसके द्वारा जो है एमएसएमई क्लस्टर्स में, फूर्ती क्लस्टर्स कह सकते हैं, उन्होंने जो क्लस्टर्स में उन्होंने टॉयज बनाए हैं. वुडन टॉयज है, सॉफ्ट टॉयज है, फ्लश टॉयज है, और इस तरीके से जो टॉयज बने हैं, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी और सोलर टेक्नोलॉजीज, इसके द्वारा यूज करके हम हाउ वी कैन मेक द डिजिटल टॉयज. डिजिटल टॉयज हम कैसे बना सकते हैं, इस डिजिटल टॉयज में अगर हम कैमरा फिट कर लिया, अगर एक बच्चा अगर टेरेस में जा रहे हैं बेसिकली, उस टेरेस में अगर बच्चा टॉयज को यूज कर रहे हैं, और वी कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स बेसिकली. उसके द्वारा कैमरा कैप्चर करेगी, और उसमें जीपीएस ट्रैकर हम अटैच कर लिया है, तो हम अपनी मोबाइल से, अपने स्मार्टफोन से ट्रैप कर सकते हैं हमारा बच्चा कहां पे यूज हो रहा है, कहां पे जा रहे हैं, ये ट्रैप कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी का फायदा है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स में अगर हम लोग देखे जाएंगे, तो बच्चा जो है टॉयज में बात कर सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के बेसिस पर टॉयज जो है बच्चों से बात करेंगे. इस तरीके से इंटरेक्टिव वे ऑफ लर्निंग भी हम प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल टॉयज के थ्रू.
1: जहां तक बात होती है डिजिटल टॉयज की, तो इस फील्ड में अभी बहुत कम काम हुआ है, और आपके इनोवेशन से यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं.
0: हाँ जी.
1: लेकिन जहां तक ये बात है कि अगर टॉयज की बात करते हैं, टॉयज का मार्केट बहुत बड़ा है, और इस फील्ड में हमारे देश के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी तक मोस्टली टॉयज, अच्छे टॉयज बाहर से मंगाते हैं इनको, तो निश्चित रूप से हमारी जो विदेशी मुद्रा है, हमारा जो फॉरेन मनी है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी बाहर जाता है. तो इस बारे में बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, बशर्ते इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा रीच में आ जाए.
0: अभी जो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो सेमीकंडक्टर, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहे हैं बेसिकली, और उसके द्वारा जो है एक कंपनी में करना चाह रहा हूँ, सहसरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो ग्रेटर नोएडा में है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं. उस उन्होंने जो प्लान किए हैं सेमीकंडक्टर डिजिटल टॉयज मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो उन्होंने प्लान भी कर रहे हैं बेसिकली, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज करके मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लान कर रहे हैं. इसके द्वारा बहुत सारे एमएसएमईज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, और जो एमएसएमई के जो स्टार्टअप्स, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अभी टॉयज में करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, और आई थिंक दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया इन द डिजिटल टॉयज इंडस्ट्री आल्सो.
1: ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. और वैसे भी हमारी सरकार की जो चाहत है, सरकार की जो उनकी मंशा है कि मेक इन इंडिया.
0: हाँ जी,
1: मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा दें और इसी को प्रमोट करें एमएसएमई के माध्यम से,
0: और डिजिटल इंडिया का भी बेसिकली, डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रहे हैं हम डिजिटल टॉयज के द्वारा, डिजिटल इंडिया को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत. वी कैन से दैट आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल बेसिकली. हम इंडिया में इंडिजिनस टॉयज डेवलप कर रहे हैं, और हम चाहते हैं दैट वी आर सेल्फ रिलायंट इन एवरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड एवरी इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी ऑल्सो बेसिकली.
1: जो हम लोग बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल, और एमएसएमई के माध्यम से जो तमाम हमारे जो छोटे सीमांत और लघु मध्यम जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इन सब चीजों की बहुत जरूरत है।
0: हाँ जी, अभी जो है स्कूल लेवल पर जो है हम देखा जाएगा तो अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग ने उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं
1: जी।
0: और छोटे लेवल पर स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट से लेकर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स तक अटल टिंकरिंग लैब्स के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग किया जा रहे हैं और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में रोबोटिक्स बनाने के लिए बेसिकली और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए 3D मॉडल्स डेवलप करने के लिए बच्चों को ट्रेनिंग

0: किए जा रहे हैं बेसिकली, उसके द्वारा जो है अभी से जो है बच्चों को माइंड में जो है एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट जो है डेवलप किया जा रहा है
1: बिल्कुल
0: बेसिकली,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: स्टार्टअप
1: बिल्कुल
0: को कल्चर भी स्कूलिंग लेवल पर किया जा रहा है। और इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से दैट जो है बच्चों को जो है प्रोग्राम है द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात में है, उसके द्वारा जो है हर साल जो है बच्चों को जो है इनोवेशन को डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च किए हैं। उसके द्वारा DST इंस्पायर कैंप के द्वारा जो है बच्चों को इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके द्वारा जो है बच्चों को अपने अपने प्रोडक्ट्स को अपने अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं एग्जीबिशन पे नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन पे। उस बच्चों को भी पेटेंट भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया पेटेंट करने के लिए, उस पेटेंट के द्वारा भी हम लोगों का बच्चों को इनकलकेट कर रहे हैं पेटेंट, छोटे छोटे बच्चों से हम इनकलकेट कर रहे हैं इनोवेशन कैसा होता है पेटेंट कैसा होता है करके, हम लोग एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट भी हम डेवलप कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ
1: जी,
0: इंडिया।
1: ये बहुत ही अच्छी बात है। और निश्चित रूप से अगर हम स्कूलिंग के दौरान ही बच्चों में ये वाली फीलिंग्स, जो साइंटिफिक अप्रोच की फीलिंग है या जो इनोवेशन की फीलिंग है, उसको डेवलप कर पाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी।
0: हाँ जी, इनफैक्ट कॉलेज लेवल पर भी सर
1: जी
0: मैं आपको हमली मेंशन करना चाह रहा हूँ, कॉलेज लेवल पर MSME इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली,
1: जी
0: और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप, उत्तर प्रदेश IT स्टार्टअप है, उत्तर प्रदेश IT स्टार्टअप पॉलिसी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप किए हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश स्टेट कॉलेजेस में, उसके द्वारा भी बच्चों को कॉलेज लेवल पर इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन के द्वारा पेटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी लॉन्च हुआ था जो आजादी का अमृत महोत्सव पे
1: जी
0: नेशनल इनोवेशन पेटेंट मिशन NIPM कहते हैं बेसिकली,
1: जी
0: उसके द्वारा बहुत सारे कॉलेजेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटेट किया पेटेंट को अवेयरनेस को क्रिएट करके, पेटेंट को नॉलेज को क्रिएट करके इस तरीके से प्रमोट किया गया है बेसिकली कॉलेज लेवल पर और बच्चों के लेवल पर भी
1: नहीं,
0: प्रोग्राम्स
1: आपकी बात
0: में।
1: बिल्कुल ठीक है कि जब हम लोग इस तरह की बात स्कूलिंग के लेवल से ही शुरू करते हैं तो बेहतर होता है कि हम केवल नौकरी के पीछे नहीं भागना है, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको
0: हाँ जी
1: नौकरी देने वाला बनना है,
0: हाँ जी
1: उद्यमी बनना है, यानी कि हम लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं।
0: हाँ जी हाँ
1: जी
0: जी
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: तो इस बारे में MSME बहुत अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, और उसमें आप जैसे लोग बहुत बेहतर, बल्कि बेहतरीन कर रहे हैं।
0: थैंक यू वेरी मच सर फॉर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और मैं चाहता हूँ दैट आई वॉन्टेड टू थैंक माई इंस्टीट्यूशन एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई मेंटर्स फॉर इनकलकेटिंग इन मी द पैशन, मेरे अंदर में पैशन उन्होंने क्रिएट किए
1: तो
0: हैं।
1: आपका ये पैशन क्रिएट कैसे हुआ, जरा हमारे श्रोता को ये बताएं।
0: हाँ जी, मैं 2007 में सर मैं जब कॉलेज में ज्वाइन किया था उस समय मैंने अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था दैट कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ बेसिकली। उसके द्वारा इन 2007 में जो है EDI गुजरात, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ गुजरात करके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है,
1: जी
0: तो उन्होंने जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट किया था, हर कॉलेजेस में कंडक्ट कराते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए,
1: जी
0: उसके द्वारा जो है मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें जो पार्टिसिपेट किया था मुझे मोटिवेशन मिला था एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में भी मैंने काम करना चाह रहा हूं
1: अच्छा
0: बेसिकली, और उसके द्वारा जो है मैं धीरे धीरे मैंने एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट मैंने डेवलप किया है, और जहां जहां एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर मैं अटेंड करता हूं और सीखता हूं, मौका मिल जाता है दैट आई कैन इंटरेक्ट विद एक्सपर्ट्स, और इस तरीके से मैंने एक्सपर्ट्स को ढूंढता हूं और उनसे सीखता हूं बेसिकली। इन 2017 में सर स्टार्टअप इंडिया यात्रा UP एडिशन 2017 में हुआ था, उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसके द्वारा जो है स्टार्टअप इंडिया यात्रा में बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। उस बूट कैंप में बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है आगरा और मथुरा रीजन के स्टार्टअप्स उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं और उसके द्वारा जो है प्रमोट किए हैं स्टार्टअप्स को। और इन 2018 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप एक्सप्रेस लॉन्च किया स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए बेसिकली, उसमें भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था एज अ नोडल ऑफिसर।
1: गुड
0: इस
1: गुड
0: तरीके से धीरे धीरे मैंने स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर मैंने डेवलप किया, और मैंने जो सोचा था दैट आई शुड ट्रांसफॉर्म माई नॉलेज एंड माई स्किल्स टू माई स्टूडेंट्स ऑल्सो बेसिकली,
1: ये बहुत
0: इसके
1: अच्छी बात
0: द्वारा
1: है, ये
0: जो
1: बहुत अच्छी
0: है
1: सोच है आपकी।
0: थैंक यू वेरी मच सर,
1: गुड
0: और मैंने जो है बच्चों को ट्रेनिंग दिया कॉलेज में, ट्रेवल ट्रेनिंग किया है, और MSME प्रोग्राम्स में भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था MSME के प्रोग्राम के थ्रू इंडस्ट्रीज में टॉक देने के लिए और स्टार्टअप्स के प्रमोट करने के लिए, इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, इसके द्वारा जो है मैंने अपने स्किल्स भी नॉलेज भी डेवलप किया है सर बेसिकली।
1: मैं देख रहा था कि आपके कुछ इनोवेशंस हैं, आपके मेकिंग टूल्स में कुछ आपने इनोवेट किया है, बहुत कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश की है, कि आप एक ही चीज में आपने चार पांच चीजों को जोड़ा हुआ है, वो कैसे आपके मन में आइडिया आया?
0: सर मैंने 21-22 के में तो एक इंडस्ट्री विजिट किया था गुड़गांव में, ग्रॉस टूल्स करके मैंने इंडस्ट्री
1: जी
0: विजिट किया था, उस इंडस्ट्रीज में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला था, उन्होंने क्रॉस

0: टूल्स को जो कंपनी है इंडियन कंपनी है और उन्होंने टूल्स में बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं. उस इंडस्ट्री को मैंने विजुअली देखा है और विजुअली देखा तो मैंने सोचा था एक टूल, व्हाई कैन नॉट आई इन्वेंट अ टूल एक्चुअली. तो इसके द्वारा जो मैंने सोचा था और उसमें छोटा सा जो कॉस्ट इफेक्टिव टूल बनाने के लिए मैंने प्लेयर को मैंने सोचा था. प्लेयर में हैमर भी इंटेग्रेट कर सकते हैं और एक नेल प्लकर भी इंटेग्रेट कर सकते हैं, एक बॉक्स कटर भी इंटेग्रेट कर सकते हैं और एक नट एंड बोल्ट टाइटनर भी इंटेग्रेट कर सकते हैं. इस तरीके से मैंने जोड़ के मैंने एक टूल इन्वेंट किया था. उस टूल को मैंने पेटेंट फाइल किया था और पेटेंट ग्रांट भी हो गया है. अभी जो है फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली है, उनके थ्रू मैंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक आलोक टूल्स करके इंडस्ट्री को उन्होंने शो किया इंटरेस्ट. और मैं चाहता हूं दैट, मैं सोचता हूं दैट वॉट एवर इन्वेंशन वी डू दैट शुड रीच द कॉमन मैन, दैट शुड रीच द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, दैट रीच द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. बेसिकली
1: निश्चित रूप से जो भी इन्वेंशन किए जाए या जो भी इन्वेंशन हो तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो आम आदमी तक पहुंचे.
0: हाँ जी,
1: उसका फायदा आम आदमी को मिले, आम लोगों के रीच तक पहुंचे. हाँ, और कॉस्ट इफेक्टिव हो.
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो ये मेरा बैकग्राउंड था. इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मैं बातचीत करता हूँ, एक्सपर्ट से बात करता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ. इसको मैंने इन्वेंट करना चाह रहा हूँ और इसको फायदा क्या है और इसका कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ, मेरी फैमिली से डिस्कस करता हूँ और मेरे को आइडिया जनरेशन मिलते हैं.
1: डॉक्टर साहब, मैं आपका जो पोर्टफोलियो देख रहा था तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स में आपने बहुत सारे कुछ काम किए हैं, तमाम सारे इनोवेशंस हैं आपके, बल्कि आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ काम किया है, तो वो क्या है, कैसे?
0: हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर. इन 2020 में जब COVID-19 आया था, फिर उस समय जो है मैंने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं काफी टाइम से मैं जुड़ा हुआ था इंडस्ट्री 4.0 डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में. उसके द्वारा जो है मेरे को एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो जापान में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मेरे को मिला था. इसमें 5 मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड मलेशिया. इसको जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट हर एक कंट्री में जो एसएमईस और यू कैन कॉल इट एज एमएसएमईस, जो एमएसएमईस को कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया, उसके द्वारा एक स्टडी रिपोर्ट बनाने के लिए 5 मेंबर कंट्रीज को दिया गया. उस 5 कंट्रीज में मैं इंडिया से सेलेक्ट हुआ था. उस 5 मेंबर कंट्रीज में जो एमएसएमईज है वो 3 एमएसएमईज को हमें इंडिया में मैंने सेलेक्ट किया था. एक 2 एमएसएमईज प्लस एक लार्ज एंटरप्राइजेस, उसमें मेटल कास्टिंग और मेटल फाउंड्री और फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये तीनों जो इंडस्ट्रीज को मैंने केस स्टडी प्रिपेयर किया और मैंने प्रेजेंट किया था और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ बुक फॉर्म में भी पब्लिश हुआ था.
1: तो इसमें आपने क्या क्या काम किया है इसमें?
0: हाँ जी, इसमें जो है
1: के ऊपर कुछ काम है आपका शायद, हाँ या रोबोट्स के ऊपर कुछ काम?
0: हाँ
1: है
0: जी, इसमें जो है मैंने जो टेक्नोलॉजी चूज किया था कोलैबोरेटिव रोबोट्स, कोबोट्स कहते हैं बेसिकली. कोबोट्स जो है इंडस्ट्रियल रोबोट्स का नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कोबोट्स कह सकते हैं बेसिकली. इंडिया में बहुत सारे एमएसएमईज जो है उन्होंने कोबोट्स इंप्लीमेंट किए हैं और फॉर एग्जाम्पल एसएमई टूल टेक्सटाइल मशीनरी जो गुजरात में है उन्होंने कोबोट्स को यूज किए हैं. कोबोट जो है वेरी सेफली यू कैन ऑपरेट विद अ ह्यूमन बीइंग. कोबोट जो है ह्यूमन बीइंग के साथ काम कर सकते हैं, शॉप फ्लोर में काम कर सकते हैं, सेफली काम कर सकते हैं और ह्यूमन को वर्कलोड को रिड्यूस करते हैं बेसिकली कोबोट्स. और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, क्वालिटी इंक्रीज होते हैं, एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं बेसिकली. इसलिए जो है कोलैबोरेटिव रोबोट जो है नेक्स्ट जनरेशन रोबोट कह सकते हैं बेसिकली.
1: यानी कि जो इसमें आजकल जो AI की बात चलती है,
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
1: हां जी इंक्लूड किया है.
0: हां जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम कोबोट्स सेंसर्स हैं कोलैबोरेटिव रोबोट्स में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoTs इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं बेसिकली. इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी इंटीग्रेटेड है. ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI कहते हैं बेसिकली. इसके द्वारा जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है शॉप फ्लोर में कहीं पर भी जो शॉप फ्लोर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं और CNC मशीनिंग है, मिलिंग है, थ्रेडिंग है, तो इस तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्रीज में कोबोट्स यूज करते हैं बेसिकली.
1: ड्रोन्स के ऊपर भी कुछ काम किया है आपने?
0: हाँ जी, ड्रोन जो है नेक्स्ट जनरेशन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं बेसिकली. ड्रोन जो है स्पेशली एग्रीकल्चरल फील्ड, जो मेरा इन्वेंशन था, नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया में लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके द्वारा जो है ड्रोन के जो मैंने इन्वेंट किया था उस ड्रोन को इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट ड्रोन है. उस ड्रोन में जो है इंटेलिजेंट क्वांटम UAV फार्मिंग, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने जोड़ा, क्वांटम टेक्नोलॉजीज क्वांटम सेंसर्स मैंने जोड़ा है और उसमें जो है 5G टेक्नोलॉजी भी जोड़ा, लोरावैन टेक्नोलॉजी भी जोड़ा और बाईफेशियल सोलर सेल्स भी मैंने जोड़ा है. इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है प्रिसिशन फार्मिंग एप्लीकेशन के लिए बहुत फायदा होती है. ड्रोन्स बेसिकली।
1: आप इतने सारे काम कर लेते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं अपने परिवार के साथ?

0: अपने काम के साथ, अपने जॉब के साथ और इतने सारे इन्वेंशंस के साथ कैसे मैनेज करते हैं?
1: सर, मेरा पैशन है काम करने का. मैं फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ और फैमिली से भी इनपुट्स ले लेता हूँ और फ्रेंड्स के साथ मैं इनपुट्स ले लेता हूँ और मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ सर. मैं आगरा और दिल्ली और ग्रेटर नोएडा ट्रैवल करता हूँ और मेरा पैशन है बहुत नेटवर्किंग करने के लिए. बहुत सारी चीज़ मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और बहुत लोगों से मैंने सीखता हूँ मैं और मेरे नॉलेज भी मैं शेयर करता हूँ बेसिकली.
0: गुड, ये बहुत अच्छी बात है. और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या क्या आपने प्लानिंग की है, क्या क्या सोचा है, आगे क्या सोचा है आपने?
1: जो भी मैंने इन्वेंशंस किए हैं और मैं जो है मेरी बच्चों को जो स्टूडेंट्स को है उनको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ. बिकॉज जो है पेटेंट के बारे में जो नॉलेजेस हैं बहुत स्टूडेंट्स के नॉलेज में पहुँचने के लिए उनको पेटेंट किस तरीके से पेटेंट्स है, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ पेटेंट्स है, अगर पेटेंट उन्होंने उनके पास आइडिया है उनको कैसे स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इनक्यूबेट कर सकते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और उसके द्वारा जो है अपने इनोवेशंस को टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इंडस्ट्री में, इसके द्वारा जो है मेरा विजन जो है मेरा गोल है इस तरीके से मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ बच्चों के थ्रू.
0: अभी तक आपके तमाम कंट्रीज हैं और तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी कुछ एमओयू हुए हैं?
1: मैंने जो है कॉलेज में इनिशिएटिव लिया था काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन लॉन्च हुआ था, नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, और उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा एमओयू साइन किया था और ग्रीन हाइड्रोजन को रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हमने कोलैबोरेट कर रहे हैं हम काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ बेसिकली. I am thankful to the government of India for giving lot of support and enormous support for launching the green hydrogen mission basically sir.
0: जी जी जी. आपके पेटेंट कितने हो चुके हैं लगभग अभी तक?
1: सर मुझे चार इंडस्ट्रियल डिजाइन पेटेंट्स है. एक हाइड्रोजन मिशन के लिए लॉन्च करने के लिए हाइड्रोजन बाइक है, स्मार्ट हैंड टूल है, ड्रोन है, फिटनेस ट्रेनर है बेसिकली सर.
0: जी जी जी. आगे क्या उम्मीद करते हैं इस फील्ड में?
1: मैं और भी इन्वेंशंस करना चाह रहा हूँ ताकि सोसाइटी को मैं देना चाह रहा हूँ, ऐसा कॉमन मैन जो है उस इनोवेशंस को यूज कर सकते हैं. अफोर्डेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया का प्रमोशन करने के लिए मैं आई एम वेरी कीन टू प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स बेसिकली एंड स्टार्टअप इंडिया ऑल्सो.
0: हम भी यही उम्मीद करते हैं, बल्कि आशा करते हैं, बल्कि विश्वास करते हैं कि आप अपने विजन में, अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब होंगे. ईश्वर आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा. बस आप यूं ही लगे रहिए.
1: थैंक यू वेरी मच सर. आई एम थैंकफुल टू माय इंस्टीट्यूशन, आई एम थैंकफुल टू ऑल इंडिया रेडियो फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, मेरी नॉलेज और मेरी स्किल्स. और स्किल इंडिया में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, स्किल इंडिया में भी मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट्स भी. और जो इस प्रोग्राम के द्वारा जो है स्टूडेंट्स को मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ और आई वॉन्टेड टू सेंड अ मैसेज दैट इनोवेशन कैन हैपन any time, any challenges, every problem statement can be converted into an innovation.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
0: Okay.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर टी सेंथिल सिवा सुब्रमण्यम से नीरज जैन की ये बातचीत. और इसी बातचीत के साथ कार्यक्रम आज के अतिथि यही संपन्न होता है. ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है. मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर. श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन. आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत.

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म साजन से। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है नदीम श्रवण की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। आइए अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म जीत से। आवाजें हैं विनोद राठौर और

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जीत फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म दिल से का ये गीत। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत रचना है ए आर रहमान की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में फिल्म दिल से का ये गीत, और इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडिया विजन फॉर द इंडियन ओशन। टूडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the blue horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्माइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु

0: परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 5:05 हो चुके हैं। अब वक्त है आज के कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण का।

हमारे सभी श्रोता 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना पर। साथ ही आप सुनेगा वार्ता युवा शक्ति से पूरा होगा स्थायी भविष्य का सपना। वार्ताकार होंगी चारू शर्मा। शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामे लोक, जिसमें चर्चा का विषय होगा पीएम कुसुम योजना। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे आस्था शर्मा से वार्ता उन्नत बीज समृद्ध किसान। लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी।

6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साधु चर्चा का विषय होगा पीवी नरसिम्हा राव जयंती। साथ ही आप सुनेंगे श्रीमती विनीता से वार्ता, अंतरिक्ष पटल और भारत की उड़ान। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम

लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ध्यान दें कि उक्त मैच का प्रसारण न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नहीं किया जाएगा। 7:10 पर आकाशवाणी आगरा से विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा वार्ता पंडित विद्या निवास मिश्र जी का रचना संसार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, अमिताभ।

शाम के 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। रात्रि 8 बजे आप सभी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने नए पुराने का, और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि के 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा राष्ट्र विज्ञान पत्रिका रेडियोस्कोप, और 10 बजे दिल्ली केंद्र से ही सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज के सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति बिना सुख नहीं और भक्ति बिना शांति नहीं, चाहे फिर ईश्वर हो या फिर देश। तो आइए सुरों और शब्दों की इस आराधना में डूबते हैं। आकाशवाणी के भक्ति परक फिल्म संगीत कार्यक्रम सुर संध्या में।

वाहेगुरु का नाम लेते हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। वाहेगुरु की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म हल्ला बोल से भक्ति रचना, आवाज और संगीत था सुखविंदर सिंह का, गीतकार थे समीर।

0: आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रवि एवं साथियों की आवाज में ये भक्ति रचना फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। गीतकार थे आनंद बख्शी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम सुर संध्या में। तो आइए सुनते हैं फिल्म कोहराम से ये भक्ति रचना किशन पाल एवं साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन।

इसी भक्ति रचना के साथ यह कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, कुछ बातें दिल की, कुछ सपनों की, कुछ आज की, कुछ आने वाले कल की। इन्हीं बातों को लेकर हाजिर है कार्यक्रम युववाणी, जहां मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। दोस्तों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आपके पसंदीदा गीत। तो दोस्तों, ये बड़ा ही खास मौका है जिसमें हमें तो दोस्तों बड़ा ही मज़ा आता है और हम हमेशा बड़े ही एक्साइटेड भी रहते हैं। चलिए, इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं आपको बता दूं कि आपको किस नंबर पर हमें कॉल करना है। दोस्तों, हमारा नंबर है 0562-297-0337। दोस्तों, आप याद रखिएगा ये नंबर और अपनी पसंद हमें ज़रूर बताइएगा। थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे आपके पसंद के गीत, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आज के एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध हम सभी की ज़िंदगी से है। दोस्तों, आजकल हम देख सकते हैं महंगाई एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर ऊर्जा के साधनों तक कई चीज़ों की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की बात करें तो इनके दामों पर दुनिया भर की परिस्थितियों का असर पड़ता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कच्चे तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सीमित होना। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हम हमेशा पारंपरिक ईंधनों पर ही निर्भर रह सकते हैं? शायद नहीं। इसलिए आज पूरी दुनिया स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। भारत में भी इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों ने लोगों को अपने घरों में सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब कई घरों की छतों पर हमें सोलर पैनल जरूर दिखाई देते हैं दोस्तों, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा की दुनिया सिर्फ सौर ऊर्जा तक सीमित नहीं है। पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जैसे कई विकल्प हमारे पास मौजूद हैं और इन्हीं में एक बेहद खास है ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसे सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा की मदद से तैयार किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल से प्रदूषण बहुत कम होता है और ये पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधनों का एक बेहतर विकल्प बन सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, कैसे पता चले कि हाइड्रोजन वास्तव में ग्रीन है? इसी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि जो हाइड्रोजन बनाई जा रही है वह तय मानकों के अनुसार स्वच्छ हो। इसके तहत उत्पादन की प्रक्रिया और

0: उससे होने वाले कार्बन उत्सर्जन की जांच की जाती है, ताकि ये भरोसा कायम रहे कि ये वास्तव में पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये प्रमाणन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले उत्पादकों को एक भरोसेमंद पहचान देता है और देश में इस नई ऊर्जा के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल उद्योगों, परिवहन और बिजली जैसे कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये न सिर्फ ऊर्जा का एक नया विकल्प है, बल्कि स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का संदेश तो यही है कि समय बदल रहा है और हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें भी बदल रही हैं। हमें ऐसे विकल्पों को अपनाना होगा जो विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के पहले कॉलर से मिलते हैं।
1: हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
2: हाँ जी।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में आकाशवाणी आगरा केंद्र से। और फिलहाल वक्त हो चला है आपकी पसंद जानने का, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम।
2: मोना, मोना कुकरेजा।
1: मोना जी, क्या करती हैं आप?
2: मैं अभी कॉलेज में हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
1: तो क्या आप आकाशवाणी सुनना पसंद करती हैं?
2: हाँ जी, बिल्कुल।
1: ऑलराइट, तो आप बताइए फिलहाल आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
2: ये रॉकस्टार का एक गाना है, हवा हवा।
1: हवा हवा, चलिए आपके लिए आपकी खास फरमाइश हम आपको सुना देते हैं, हवा हवा।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना मोना कुकरेजा के पसंद का गीत हवा हवा, जिसमें थी मोहित चौहान की आवाज़। चलिए कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर के चलते हैं और हमारे आज के गेस्ट चारू शर्मा जी से मिलते हैं, जिनसे हम जानेंगे युवा शक्ति से पूरा होगा स्थायी भविष्य का सपना।
1: संपूर्ण विश्व की प्रगति में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा किसी एक देश के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए उस रीढ़ की हड्डी के समान हैं, जिसके बिना शरीर की कल्पना मुमकिन नहीं है। हम सभी यह भलीभांति जानते हैं कि जिस आजाद भारत में आज हम सांस ले रहे हैं, उसके पीछे भी हमारे देश के युवाओं का ही योगदान है। युवा नवीन शक्ति व ऊर्जा के स्रोत होते हैं और ये अपने नए विचार व नेतृत्व तो क्षमता के लिए ही जाने जाते हैं। प्रायः अनिवार्य शिक्षा खत्म करने और रोजगार की शुरुआत करने के बीच की आयु के व्यक्तियों को युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। वे युवा ही हैं जिनके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। वे युवा ही हैं जो नित्य नवीन अनुसंधान करके देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। वे युवा ही तो हैं जो नए नए व्यवसायों की स्थापना करके केवल स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होते, वरन अन्य कई बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। कई बार देखा गया है कि युवा ही सामाजिक सेवा व स्वयं सेवा के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों की भी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इस तरह से अगर हम विचार करें तो पाएंगे कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ भी विकास हो रहा है या किया जा सकता है, उसमें युवाओं का योगदान अन्य आयु वर्ग के व्यक्तियों से काफी अधिक है। युवा वर्ग के विश्व प्रगति में योगदान को ध्यान में रखकर ही वर्ष 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के विचार को बल दिया गया। इसके बाद ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। बाद में यही प्रस्ताव 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार भी किया गया। 12 अगस्त 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तब से यह दिन युवाओं के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और उनके

0: सशक्तिकरण को बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2003 से प्रत्येक वर्ष एक नई थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है स्थायी विकास लक्ष्यों और उससे आगे बढ़ने के लिए स्थानीय युवा कार्य। यह स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका और सामाजिक विकास में शांति में उनके व्यापक योगदान पर प्रकाश डालती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का नारा है युवाओं का सशक्तिकरण कल का निर्माण। यह नारा युवाओं की वर्तमान स्थिति के अनुरूप एकदम सटीक साबित होता है। युवाओं के सशक्तिकरण के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। युवाओं का सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युवाओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया युवाओं को अपने भविष्य को आकार देने और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना मात्र नहीं है, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता व डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दों पर ध्यान देना है। हम सभी यह जानते हैं कि आज दुनिया की आधी आबादी पर युवा वर्ग का अधिकार है। यह अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी मानी जाती है। स्वीडन, जापान व जर्मनी जैसे कई बड़े देशों में युवाओं को नए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिस कारण वे देश आर्थिक रूप से बहुत उन्नति कर रहे हैं। भारत के युवा वर्ग की बात करें तो आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और यह हम सभी के लिए गर्व की भी बात है। परंतु आज भारत देश का युवा काफी परेशानी का सामना कर रहा है और इसका मुख्य कारण बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और हिंसा है। युवा मस्तिष्क नवोन्मेषी व परिश्रमी माने जाते हैं, परंतु कोई भी युवा किसी देश को तभी बदल सकता है जब उसे विभिन्न क्षेत्रों में उचित अवसर प्रदान किए जाएं। भारत में युवा के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उच्च स्तर पर कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम आदि आदि। इसके साथ ही बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सरकार समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन भी करती रहती है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी इस तरह के कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र युवा शक्ति कार्यक्रम। वर्तमान युग तकनीकी का युग है, इस समय युवा के पास अपने विचारों को साझा करने के कई साधन उपलब्ध हैं। वे सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने विचार अन्य लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। आज हम यह भी देख रहे हैं कि युवा वर्ग में नकारात्मकता काफी तेजी से बढ़ रही है, उनमें धैर्य की कमी है। वे शीघ्र, अति शीघ्र किसी भी वस्तु की प्राप्ति हेतु उत्तेजित हो जाते हैं और उसकी प्राप्ति में असफल होने पर मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। यदि युवा को सही मार्गदर्शन दिया जाए व उनमें मौजूद क्षमता का सही उपयोग किया जाए तो इससे न केवल उनका स्वयं का विकास होगा, साथ ही समाज का भी तेजी से विकास होगा। युवा वर्ग के हित को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार द्वारा 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति शुरू की गई। यह नीति 15 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं के विकास पर केंद्रित थी। इसी नीति की समीक्षा कर 2024 की राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार हुआ है, जो 10 वर्ष की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें 5 मुख्य क्षेत्र हैं: शिक्षा, रोजगार, युवा नेतृत्व, स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय। निश्चित रूप से ही यह युवा नीति हाशिए पर रहने वाले युवाओं के लिए सुरक्षा, न्याय व समर्थन सुनिश्चित करेगी।
1: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे हमारी वार्ताकार चारू शर्मा जी को, जिन्होंने हमसे साझा किए अपने विचार विषय युवा शक्ति से पूरा होगा स्थायी भविष्य का सपना। दोस्तों, हम युवा ही तो हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य को सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं। चलिए इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं खेल जगत की ओर। दोस्तों, आप जानते हैं कल से शुरू होने जा रही है टेनिस की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, जो कि है विंबलडन चैम्पियनशिप 2026।

दोस्तों विंबलडन 2026 का आयोजन कल से यानी कि 29 जून से 12 जुलाई तक लंदन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में किया जाएगा। इस साल का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। दोस्तों विंबलडन जो है ना दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मशहूर टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। इसकी शुरुआत साल 1877 में हुई थी और इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी हरी घास वाली कोर्ट और खिलाड़ियों की सफ़ेद ड्रेस और यहाँ की पुरानी परंपराएं। दोस्तों टेनिस में ना चार बड़े ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिनमें विंबलडन का अपना एक अलग ही महत्व है। दुनिया के बड़े खिलाड़ी इस खिताब को जीतना चाहते हैं और अपने करियर की एक बड़ी उपलब्धि भी मानते हैं। इस टूर्नामेंट में पुरुष भी होते हैं और महिला वर्ग भी होते हैं जिनके बीच फिर मुकाबले भी खेले जाएंगे। खिलाड़ी अपनी शानदार टेक्निक और मेहनत के दम पर ट्रॉफी जीतने के लिए कल से मैदान में उतरेंगे। आपको बता दूं विंबलडन की एक खास बात है वो ये कि यहाँ पे पुरानी परंपराओं को बचाए रखते हुए नई टेक्निक को अपनाया जा रहा है। दोस्तों इस साल वीडियो रिव्यू जैसी टेक्निक से फैसलों को और भी बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम सब तैयार हो जाते हैं दोस्तों टेनिस के इस रोमांचक सफर के लिए जहां हर मैच में देखने को मिलेगा शानदार खेल और शानदार टक्कर। खैर ये तो बात हो गई खेल जगत की, लेकिन और भी संभावनाएं हैं जो आज के समय में हम देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं संभावनाओं के विषय में और आज हम बात करेंगे AI से जुड़ी संभावनाएं। दोस्तों हम अक्सर बात करते हैं ना AI से कि हम AI के दौर में जी रहे हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जगह जगह IT हब और डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं और हर दिन बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों सिर्फ डेटा होना काफ़ी नहीं है, असली ज़रूरत है इस डेटा को समझने की, उससे सही जानकारी निकालने की और उसका इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने के लिए इसको एनालाइज करने की। यही वजह है कि आज डेटा डोमेन युवाओं के लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प बनकर सामने आ रहा है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है ना, चीज़ों को समझना है और समस्याओं के हल को ढूंढना पसंद है तो डेटा की दुनिया में आपके लिए कई मौके हैं साथियों। इस क्षेत्र में कई रोल्स हैं जैसे कि डेटा एनालिस्ट जो कि डेटा को समझकर रिपोर्ट और जानकारी तैयार करते हैं जिससे कंपनियां सही फैसले ले सकें। वहीं दूसरी ओर है डेटा साइंटिस्ट, डेटा और मशीन लर्निंग की मदद से भविष्य से जुड़े अनुमान लगाने वाले मॉडल बनाते हैं। और डेटा इंजीनियर ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सही तरीके से इकट्ठा हो और ज़रूरत के समय उपलब्ध रहे। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटा को आसान तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि जो कंपनीज हैं वो बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकें। और आखिर में है मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI मॉडल को तैयार करते हैं और उन्हें रियल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। अब बात करते हैं अगर हम में से किसी को इन रोल्स में अगर जाना है, अपना करियर देखना है तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों सबसे ज़रूरी है अपने आप को स्किल्स के साथ एम्पावर करना, यानी कि इन स्किल्स को सीखना। सबसे पहले ज़रूरी है पाइथन, SQL, बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स की समझ, इसके साथ डेटा को साफ करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे चार्ट या ग्राफ के ज़रिए समझना और मशीन लर्निंग की शुरुआती जानकारी भी मदद होती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ टेक्निक ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, अपनी बात को आसान भाषा में समझने की क्षमता भी ज़रूरी है क्योंकि डेटा से मिली जानकारी तभी काम आती है जब लोग उसे समझ सकें। अगर आप इस क्षेत्र में शुरुआत करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, नई स्किल्स सीखें, छोटे प्रोजेक्ट बनाएं और धीरे धीरे अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता चुनें। तो दोस्तों डेटा और AI का ये दौर नए अवसरों का दौर है। जो लोग आज सीखना शुरू करेंगे उनके लिए आने वाले समय में इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते खुल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी ऑप्टिमिज्म के साथ हम मिलते हैं आज के हमारे अगले कॉलर से।

0: आपका स्वागत है आकाशवाणी आगरा केंद्र से कार्यक्रम युववाणी में। और फिलहाल आप बात कर रही हैं रेडियो वाली दोस्त कनिका से। तो कौन है इस वक्त कॉल पर हमारे साथ?
1: मेरा नाम अनन्या है। कनिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: स्वागत है आपका अनन्या। आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अनन्या, फिलहाल वक्त हो चला है आपकी पसंद सेगमेंट का, यानी कि जिसमें हम जानेंगे आपकी पसंद का गाना और वो हम आपके लिए प्ले करेंगे। तो आप बताइए।
1: क्या आप मेरे लिए प्ले कर सकते हैं सच कह रहा है ये दीवाना?
0: जी, मैं समझती हूँ ये गाना है रहना है तेरे दिल में मूवी से।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपके लिए आ रहा है ये गाना।
1: थैंक यू।

दोस्तों, अब स्टूडियो की क्लॉक इशारा कर रही हैं कि वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम ग्रामीलोक का, जहां हमारे प्यारे लिसनर्स मिलेंगे रितुजा सक्सेना जी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, आप पानी पीते रहिएगा और खुद को हाइड्रेटेड ज़रूर रखिएगा। मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त मिलूंगी आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। प्रोग्राम प्रेजेंटर थे कनिका सिंह। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम ग्राम्यलोक का।

ग्रामीण लोक कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को आपकी रेडियो सखी ऋतुजा का राम राम नमस्कार। और मित्रों, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो नमस्कार राम राम तो कर ही लेते हैं, जैसा कि अभी हमने किया, क्योंकि ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है जो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से जाने अनजाने सीख लिया। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं जो हमारे या हमारे संस्कारों रीति रिवाज बन गई हैं और अब हम उनका पालन करने लगे हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा भाव भूल गए हैं, जैसे कि कलश पूजन। साथियों, किसी भी मांगलिक कार्य का आरंभ सदैव कलश पूजन से ही होता है। कलश पूजन यानी जल से भरा एक पात्र। अब जरा ये सोचिए कि सदैव शुभ कार्य में सबसे पहले कलश पूजन ही क्यों? आप कहेंगे कि भाई ये रिवाज है। जी हाँ साथियों, ये रिवाज है, लेकिन इसके पीछे छिपा है यह भाव कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए ही कहा गया है, जल है तो जीवन है। और साथियों, हमारे पूर्वजों ने इसका महत्व समझा और अपने पूजा पाठ मांगलिक कार्यों में स्थान दिया, और तभी तो हजारों सालों से कुएं, बावड़ी, तालाब बनवाना पुण्य का काम माना जाता रहा। और लगभग सभी राजा, नगर सेठ, मंत्रियों ने तरह तरह के खूबसूरत कुएं बावड़ियां बनवाई। इन्हीं में से एक 400 साल पुराना पानी का टैंक है जो आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के दौरान मिला है, जो 16वीं शताब्दी के मुगल युग का है। टोडरमल बारादरी के संरक्षण कार्य की खोज के दौरान जब आसपास के क्षेत्र की खुदाई हुई, तब इस पानी के टैंक का पता चला। यह बारादरी एक इमारत है जिसमें 12 दरवाजे हैं। तो भैया, अब की बार जब भी फतेहपुर सीकरी जाना हो तो बुलंद दरवाजे, सीकरी महल के साथ टोडरमल बारादरी भी जरूर देखिए और समझिए कि कितनी संपन्न है हमारी परंपरा, संस्कार और विरासत। और अब साथियों, परंपरा में खान पान और लोक संगीत तो आता ही है, तो चलिए रुक करते हैं एक मीठे से लोकगीत की ओर।

जल संचयन की पुरातन परंपरा और उनकी धरोहर की बातों के बाद अब बात किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या जल संकट की, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और नासमझी बेपरवाही के कारण लगातार भूजल स्तर घट रहा है और खेतीबाड़ी में सिंचाई के लिए सबमर्सिबल पंप से सिंचाई हमारे किसान साथियों की जरूरत बन गई है। लेकिन फिर भी बिजली खपत के कारण कृषि लागत बढ़ जाती है और जरूरी नहीं कि बिजली सप्लाई पूरे समय मिलती रहे। ऐसे में भाइयों, अगर बिजली का बिल भी ना देना पड़े और सबमर्सिबल पंप से सिंचाई भी मन माफिक समय पर की जा सके तो कहना ही क्या। और इसी का एक विकल्प है सोलर पंप, जो सूरज के प्रकाश की मदद से चलाया जाता है। और अब यह सोलर पंप लगवाने के लिए सरकार की भी एक योजना है जिसका नाम है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। इस योजना में हमारे किसान साथियों को सोलर पंप लगवाने में मात्र कुल लागत का 10% ही खर्च करना होता है, बाकी 90% सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। इस सोलर सब्सिडी योजना के तहत किसान भाइयों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसानों की आय भी बढ़ती है। साथियों, यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। वह हैं आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पते का प्रमाण पत्र और आवेदक का फोटो। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या किसी जन सेवा केंद्र की सहायता से आवेदन भी कर सकते हैं। मित्रों, कुसुम योजना के कई लाभ हैं। एक तो हमारे किसान साथियों को बहुत कम कीमत पर सोलर पंप मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप कभी भी सिंचाई कर

सकते हैं, साथ ही इससे डीजल की बचत होगी और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। और जो बिजली अतिरिक्त पैदा होगी वह हमारे किसान साथी किसी सरकारी या गैर सरकारी बिजली विभाग को बेच सकते हैं, जिससे किसानों को लगभग 6,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। और कुसुम योजना के तहत जो भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे उन्हें बंजर भूमि में स्थापित किया जाएगा, ताकि बंजर भूमि का भी उपयोग किया जा सके और इस बंजर भूमि से भी आय प्राप्त की जा सके। और इसी कड़ी की में जुड़ती है, जो खुशहाली की कड़ी है उसमें जुड़ती है उन्नत बीज, जो हमारे किसान भाइयों की खुशहाली का राज है। और साथियों, उन्नत बीज का चुनाव जो है वो हमारे किसान साथी यदि कर

0: ताकि बंजर भूमि का भी उपयोग किया जा सके और इस बंजर भूमि से भी आय प्राप्त की जा सके। और इसी कड़ी की में जुड़ती है, जो खुशहाली की कड़ी है उसमें जुड़ती है उन्नत बीज, जो हमारे किसान भाइयों की खुशहाली का राज है। और साथियों, उन्नत बीज का चुनाव जो है वो हमारे किसान साथी यदि करते हैं तो उनको बहुत अच्छी फसल का एक उपहार मिल सकता है। क्योंकि साथियों, हो सकता है कि जब आप कोई बीज का चुनाव करें उसमें कोई बीमारी हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्नत बीज का ही चुनाव करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीज दिखने में तो स्वस्थ होता है, दिखता है, लेकिन उसमें बीज जनित या मृदा जनित रोग छिपे हो सकते हैं। ऐसे में बीज फसल को प्रभावित कर सकती है। तो भैया, उन्नत बीज का चुनाव कैसे करें और क्या उपचार करें, आज इसी विषय में हम सुनते हैं ये वार्ता, उन्नत बीज समृद्ध किसान। और आज हमारी वार्ताकार हैं आस्था शर्मा।
1: नमस्कार, आज का विषय है उन्नत बीज समृद्ध किसान। मिट्टी की खुशबू में बसी है किसानों की पहचान, खेतों की हरियाली से सजता है हिंदुस्तान। मेहनत, लगन और उम्मीद का यही है आधार, अच्छे बीज से ही होता है सुनहरे भविष्य का विस्तार। कृषक वर्ग के सभी परिजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आस्था शर्मा आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गुणवत्ता युक्त बीजों के महत्व और उनकी पहचान के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बीज प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह पौधे का वह भाग है जिसमें नया पौधा बनने की क्षमता छिपी होती है। किसी भी फसल की सफलता की शुरुआत एक अच्छे बीज से ही होती है। किसानों को बीज का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर और गुणवत्ता युक्त बीज ही अच्छी फसल तथा अधिक उपज का आधार बनता है। यदि अधिक उत्पादन और बेहतर फसल प्राप्त करने का कोई सबसे महत्वपूर्ण साधन है तो वह एक गुणवत्ता युक्त बीज है। इसलिए बीज का चयन हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। किसान भाइयों और बहनों, जब आप किसी विश्वसनीय संस्था, कृषि केंद्र या अधिकृत विक्रेता से बीज खरीदते हैं तो आपको प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गुणवत्ता युक्त बीज तैयार कैसे किया जाता है? आइए इसके बारे में संक्षेप में जानते हैं। किसान भाइयों और बहनों, बीज उत्पादन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। प्रत्येक चरण के बीज की पहचान के लिए अलग अलग रंग का टैग लगाए जाते हैं। सबसे पहले आता है नाभिकीय बीज। यह किसी किस्म का सबसे शुद्ध और मूल बीज होता है। इसे फसल प्रजनक अर्थात वैज्ञानिक अपने संरक्षण में तैयार करते हैं। नाभिकीय बीज पर सामान्यतः कोई निर्धारित टैग नहीं लगाया जाता। प्रजनक बीज, बीज उत्पादन की अगली कड़ी में नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन और देखरेख कृषि वैज्ञानिकों तथा फसल प्रजनकों की निगरानी में की जाती है। इस बीज की पहचान सुनहरे पीले रंग के टैग से होती है। आधार बीज, प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन बीज निगमों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। इसकी पहचान सफेद रंग के टैग से होती है। पंजीकृत बीज, कुछ बीज उत्पादन प्रणालियों में आधार बीज से पंजीकृत बीज तैयार किया जाता है। इसकी पहचान बैंगनी रंग के टैग से होती है, हालांकि भारत में इसका उपयोग बहुत सीमित है। प्रमाणित बीज, बीज की प्रजाति विकास की अंतिम अवस्था प्रमाणित बीज है। आधार बीज अथवा पंजीकृत बीज से प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है। इसका उत्पादन प्राय पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों, बीज कंपनियों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यही बीज किसानों को खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसकी पहचान नीले रंग के टैग से होती है। इस प्रकार सुनहरा पीला टैग प्रजनक बीज, सफेद टैग आधार बीज, बैंगनी टैग पंजीकृत बीज तथा नीला टैग प्रमाणित बीज की पहचान कराता है। इसलिए बीज खरीदते समय टैग अवश्य देखें। किसान भाइयों और बहनों, अब प्रश्न यह उठता है कि हमें प्रमाणित बीज अर्थात सर्टिफाइड सीड ही क्यों चुनना चाहिए? प्रमाणित बीज की गुणवत्ता की जांच संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा की जाती है। ऐसे बीजों में आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है, अंकुरण क्षमता अधिक होती है तथा इनमें खरपतवारों, रोगों और अन्य फसलों के बीजों की मिलावट की संभावना भी बहुत कम होती है। प्रमाणित बीजों के उपयोग से पौधों की वृद्धि एक समान होती है, फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। यही कारण है कि कृषि

0: कृषि विशेषज्ञ किसानों को हमेशा प्रमाणित बीजों के उपयोग की सलाह देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रमाणित बीज किसान के लिए एक सुरक्षित निवेश की तरह है, जो बेहतर फसल और अधिक उत्पादन की संभावना को बढ़ाता है। याद रखिए, अच्छी फसल की शुरुआत अच्छे बीज से होती है और अच्छे बीज की पहचान उसका प्रमाणित होना है। किसान भाइयों और बहनों, केवल अच्छे बीज का चयन करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि बीज को सही तरीके से संभालना भी उतना ही आवश्यक है। यदि गुणवत्ता युक्त बीज का भंडारण सही ढंग से न किया जाए तो उसकी अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए बीजों को हमेशा सूखी, ठंडी और साफ जगह पर ही संग्रहित करना चाहिए तथा उन्हें नमी और कीटों से बचाकर रखना चाहिए। इसके साथ ही बीज उपचार का भी विशेष महत्व है। बीज बोने से पहले अनुशंसित फफूंदनाशी या जैविक उपचार करने से बीज और पौधों को प्रारंभिक रोगों से सुरक्षा मिलती है। बीज उपचार एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह फसल की अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीज खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा प्रमाणित और लेबल युक्त बीज ही खरीदें। पैकेट पर अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत, बैच नंबर और वैधता अवधि अवश्य जांचें। बिना लेबल वाले या अत्यधिक सस्ते बीजों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि वे अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं हो सकते। आज के समय में अनेक सरकारी संस्थाएं, कृषि विश्वविद्यालय, बीज निगम और अधिकृत बीज विक्रेता किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को चाहिए कि वे इन्हीं विश्वसनीय स्रोतों से बीज खरीदें, ताकि उन्हें बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग-अलग फसलों और क्षेत्रों के लिए अलग-अलग किस्मों की अनुशंसा की जाती है। इसलिए बीज खरीदने से पहले कृषि विशेषज्ञों या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेना लाभदायक रहता है। सही क्षेत्र के लिए सही किस्म का चयन उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि किसान भाइयों और बहनों, बीज केवल एक कृषि आदान नहीं है, बल्कि यह किसान की आशाओं, मेहनत और भविष्य की समृद्धि का आधार है। एक सही बीज का चयन पूरे कृषि चक्र को सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसलिए हमेशा प्रमाणित, गुणवत्ता युक्त और अनुशंसित बीजों का ही उपयोग करें। बीज अच्छा हो तो फसल मुस्कुराती है, मेहनत किसान की रंग लाती है। हर खेत में खुशहाली का संदेश यही प्रमाणित बीज अपनाई समृद्धि घर तक आती है। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी वार्ता उन्नत बीज समृद्ध किसान, और आज हमारी वार्ताकार थी आस्था शर्मा।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, अब हम आपको आज और कल के तापमान की जानकारी भी दे देते हैं। आज आगरा और उसके आसपास के इलाकों में दिन का तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रहा एवं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल यानी सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और साथियों, मौसम के साथ ही मंडी भाव भी जान लीजिए। आज आगरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, चना 8500 से 8900 रुपए प्रति क्विंटल, चावल 3000 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल और देसी आलू 1050 से 1380 रुपए प्रति क्विंटल और प्याज 800 रुपए प्रति क्विंटल। और साथियों, इन सब बातों के बाद अब फिर एक बार रुक करते हैं एक मीठे से लोकगीत की ओर।

अभी आप सुन रहे थे ऋतुजा सक्सेना से कार्यक्रम ग्रामे लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 मिनट हो चुके हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो सखी छवि गर्ग का स्नेह भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताइए दोस्तों, कैसी कट रही है आपकी गर्मी? अरे भाई, हमारा कहने का मतलब है कि आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना, क्योंकि बात दरअसल ये है कि मौसम चाहे जो भी हो, सर्दी गर्मी या फिर बरसात, मौसम की दुश्वारियों से जूझते हुए हमारे श्रमिक भाई इतनी मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और खुशी खुशी हमारा कार्यक्रम सुनते रहें। श्रोताओं, सबसे पहले हम पूछ लेते हैं आज का प्रश्न ये है कि क्या आपको पता है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? आप इसका उत्तर खोजिए और हमारे कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। आगे के कार्यक्रम में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों, आज भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती है। उनका जन्म 28 जून सन 1921 को तेलंगाना के लखनेपल्ली गांव में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, पेशे से वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता थे। इन्होंने सन 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और हाँ, वे दक्षिण भारत के पहले और गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से दूसरे व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हें सन 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश को भारी आर्थिक संकट से उबारा। साथियों, वे भारत के ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देश को आर्थिक बदलाव की नई दिशा दी। दरअसल वर्ष 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ऐसे समय में उनके नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, जिसने उद्योगों, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा किए। हमारे मजदूर भाइयों के नजरिए से इन सुधारों का सबसे बड़ा असर रोजगार के अवसरों पर पड़ा। नए उद्योग स्थापित हुए, निजी क्षेत्र में काम बढ़ा और उत्पादन के नए रास्ते खुले, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला। हालांकि इस बदलाव के साथ श्रमिकों के सामने नई चुनौतियां भी आईं, जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कौशल की जरूरतें बढ़ी और काम करने के तौर तरीकों में बदलाव आया। श्रोताओ, पीवी नरसिम्हा राव जी हमें यह संदेश देते हैं कि बदलते समय के साथ सीखते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और आज का श्रमिक केवल मेहनती ही नहीं बल्कि तकनीक और नए कौशल का जानकार भी होना चाहिए। साथियों, श्रमिक किसी भी राष्ट्र की

रीढ़ होते हैं। कारखानों की मशीनें हो, निर्माण कार्य हो, परिवहन हो या सेवा क्षेत्र, हर जगह श्रमिकों की मेहनत देश को आगे बढ़ाती है। इसलिए श्रमिकों का सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज पीवी नरसिम्ह राव जी की जयंती पर हमें ये संकल्प लेना होगा कि अपने काम को ईमानदारी से करें, साथ ही अपने कौशल को लगातार बढ़ाते रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हम सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर श्रम सुविधाओं के लिए आवाज उठाते रहें। साथियों, जिंदगी में मेहनत के बाद जो खुशी मिलती है उसे बताया नहीं जा सकता। आखिर जब दुख के बाद सुख आता है, कितना अच्छा लगता है, जैसा कि आप इस गीत के जरिए सुनिए।

0: हाँ तो दोस्तों, हमने जो आपसे प्रश्न किया था उसका उत्तर है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। और हाँ, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीमा सभी तरह से हमारे लिए कितना जरूरी है। सही कहा ना मैंने? अरे भाई, तभी तो हर साल 28 जून यानी आज के ही दिन राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, साथ ही जीवन बीमा या फिर स्वास्थ्य बीमा या वाहन और संपत्ति बीमा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, बीमा आपात स्थितियों मतलब कि बुरे समय में या दुर्घटनाओं के समय एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। यह दिन लोगों को अपनी मौजूदा बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन करने और ये जांचने के लिए जागरूक करता है कि बीमा उनकी जरूरतों के हिसाब से ठीक है कि नहीं। मित्रों, समय समय पर सरकार द्वारा भी आम नागरिकों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं आम नागरिकों को सुरक्षा देती हैं। तो दोस्तों, ज्ञान सागर में आज इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी मिलते हैं क्षणिक अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, जैसा कि हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि हम सभी पृथ्वीवासी हैं और हमेशा से ही धरती का मानव आकाश की ओर बड़ी जिज्ञासा से देखता है, और इसी जिज्ञासा का परिणाम है कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सी जानकारियों से परिचित भी हैं, क्योंकि समय समय पर अलग अलग देशों द्वारा नई नई खोजें की गई, जिसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है। आइए इसी विषय पर सुनते हैं वार्ता अंतरिक्ष पटल और भारत की उड़ान। वार्ताकार हैं श्रीमती विनीता।
2: वर्तमान युग अंतरिक्ष और कंप्यूटर का युग है, लेकिन अंतरिक्ष क्या है? हम किसे अंतरिक्ष कहकर पुकारते हैं? वस्तुतः ये सारा आकाश और इसका असीम अबाध विस्तार ही अंतरिक्ष है। ना इसका कहीं आरंभ है और ना अंत। यह एक ऐसा विशाल शून्य है जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है। सभी चीजों, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, धूमकेतु आदि का इसमें समावेश है। कुछ भी इससे बाहर नहीं है। हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि जो भी हैं और जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, वे सभी इसी में हैं। यह एक बड़ा विशाल रहस्यमय और अलौकिक

ब्रह्मांड है। मानव प्रारंभ से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है। आज धरती पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की नाना प्रकार की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है एक समय ऐसा आए जब धरती पर रहने की जगह ना हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने ये पता लगाना शुरू किया कि क्या धरती के अलावा अन्य किसी ग्रह या उपग्रह पर रहने की शुरुआत की जा सकती है। साथ ही अमेरिका और रूस ने ये पता लगाना शुरू किया कि अंतरिक्ष में जाकर कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त की जाएं जिससे धरती की कठिनाइयों को कम करने तथा मनुष्य को नई नई सुविधाएं प्रदान करने में सफलता मिल सके। इस कोशिश में बड़े बड़े देशों के साथ भारत ने भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। भारत में तिरुअनंतपुरम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर सन 1963 में रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। इसी वर्ष इस स्थान से अमेरिका द्वारा बनाया गया रॉकेट छोड़ा गया। अंतरिक्ष विज्ञान पर व्यवस्थित रूप में काम करने के लिए 15 अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किया गया। इसके बाद सन 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष विभाग तथा अंतरिक्ष आयोग की भी स्थापना की। वर्ष 1975 में भारत का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। वर्ष 1979 को भारत का अपना उपग्रह अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा गया। 18 जुलाई 1980 में स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 डॉक्टर MPJ अब्दुल कलाम तत्कालीन परियोजना निर्देशक के निर्देशन में अंतरिक्ष में भेजा गया। SLV-3 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। इसके बाद 1981 में रोहिणी तथा एपिल उपग्रह श्री हरिकोटा नामक स्थान से छोड़े गए। 1982 में उपग्रह FBRS-1A तथा INSAT-FC अंतरिक्ष में छोड़े गए। वर्ष 1983 में इसरो द्वारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा 9 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए, जिससे संचार, रेडियो प्रसारण व अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार को बहुमूल्य उपलब्धि मिली। 3 अप्रैल 1984 के ऐतिहासिक दिन भारत का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष यान में गया था। वह व्यक्ति राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में तब स्क्वाड्रन लीडर के रूप में कार्यरत थे। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य अंतरिक्ष यान 80 सुयोज T-11 के द्वारा संभव हुआ। यह यान रूस के अंतरिक्ष स्टेशन बैकोनोर से छोड़ा गया था। इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान राकेश शर्मा ने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उन्होंने अपने यान से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के दुर्लभ चित्र भी लिए। उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने राकेश शर्मा से थोड़ी बातचीत की। जब वे अंतरिक्ष में थे, तब शर्मा से प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 11 अप्रैल 1984 को यह यान सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतर आया। भारतीय मूल की दिवंगत कल्पना चावला की 2 बार अंतरिक्ष यात्रा भी भारत के लिए गौरव की बात रही। इसके अतिरिक्त इसरो की अन्य उपलब्धियां भी हैं जिस पर हम भारतीयों को गर्व है। दिनांक 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C11 के द्वारा चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की भौगोलिक, रासायनिक व खनिज स्थिति का पता लगाना था। चंद्रयान में अंतरिक्ष में पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कराई गई थी तथा वर्ष 2013 में चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर स्थापित किया गया और वहां पर भारतीय झंडा भी फहराया गया।

0: इस प्रकार भारतवर्ष अमेरिका रूस तथा जापान के बाद ऐसा चौथा देश बना जिसने चंद्रयान चंद्रमा पर स्थापित किया और ये भी पता लगाया कि चंद्रमा पर पानी उपलब्ध है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की शुरुआत भारत के अंतरिक्ष इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण पलों में से एक था। इसरो के पहले प्रयास में मंगलयान के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ने इतिहास रच दिया। पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश था जिसकी भेजने की लागत भी अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम थी। 5 नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ मंगलयान 2014 को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह में प्रवेश कर गया। आज भारत की गिनती अंतरिक्ष के क्षेत्र में 5 सर्वाधिक उन्नत देशों में होती है। इसका श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को जाता है। आज विभिन्न उपग्रहों से प्राप्त चित्रों तथा आंकड़ों का उपयोग कृषि, फसलों की पैदावार का अनुमान, खनिज वन संपदा, जल संसाधन, महासागरीय संपदा, भूमि का सर्वेक्षण तथा सूखा, बाढ़, तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना देने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर संचार उपग्रहों द्वारा भारत में संचार क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उपग्रहों के माध्यम से ही टेलीविजन के कार्यक्रम, मोबाइल सेवाएं, दूरस्थ एसटीडी सेवाएं आदि संचालित होती हैं। अंत में अब मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश अब उपग्रहों के निर्माण, संचालन, नियंत्रण एवं बेहतर इस्तेमाल में विश्व में अग्रता प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी और भी दूरियां तय करनी है, अभी कई और मंजिलों तक पहुंचना है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता अंतरिक्ष पटल और भारत की उड़ान। वार्ताकार थी श्रीमती विनीता। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं सेहत टिप्स के बारे में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन प्राकृतिक जड़ी बूटी से जुड़ी जानकारी जो पाचन को सुधारने, गैस एसिडिटी मिटाने और मुंह की दुर्गंध दूर करने में मदद करती है। वो है पुदीना। जी हाँ दोस्तों, पुदीना की तासीर ठंडी होती है जो गर्मियों में शरीर और पेट को ठंडक देती है। इसके अलावा भारी भोजन या अपच के बाद पुदीने की चाय पीने या इसकी कुछ पत्तियों को चबाने से पेट की ऐंठन और पेट फूलने में तुरंत आराम मिलता है। और मित्रों, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण एक्ने और पिंपल्स को ठीक करने में मदद करते हैं। पुदीने को पीसकर गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा पर ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही त्वचा चमक उठती है। दोस्तों, आप सेहतमंद बने रहें और खुश रहें, इसी के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, प्रस्तुत करता थी छवि गर्ग। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चारू सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान है और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर के द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी मजबूती है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा। श्री मोदी ने लोगों से स्वर्ण खरीद से बचने, गैर जरूरी विदेश यात्रा टालने और कुछ समय के लिए कार पूलिंग की अपील की थी। उन्होंने किसानों से रसायन मुक्त कृषि अपनाने, कृषि भूमि का संरक्षण करने और प्राकृतिक उर्वरकों को अधिकतम उपयोग करने को भी कहा था। प्रधानमंत्री ने अपनी अपील का समर्थन और सहयोग करने के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई।

0: Loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly 4 months due to the West Asia conflict. And in the ICC Women's T20 World Cup, India were 11 for no loss in 11.3 overs against Australia in the final Group A match at the Lord's London when reports last came in. Winning the toss, India opted to bat first. India clinched the bronze medal at the AVC Men's Volleyball Cup in Ahmedabad today after defeating Bahrain 3-1 in the third place playoff. The victory marks India's first medal in the tournament in 40 years, capping off a memorable campaign on home soil. Earlier, India narrowly missed out on a place in the final after suffering a defeat to Indonesia in the semifinals. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार। मीडियम वेव 96.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है विविधा कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा यानी अमिताभ से वार्ता। पंडित विद्या निवास मिश्र जी का रचना संसार।
2: पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना संसार बहुत विराट। श्री दयानिधि मिश्र द्वारा संपादित उनकी रचनावली 21 खंडों में समायोजित है, जिसमें 3 खंड अंग्रेजी में लिखे गए हैं। स्पष्ट है कि उनका लेखन परिमाण चकित करने वाला है। एक ओर वे डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि, रीति विज्ञान और भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन की पीठिका आदि ग्रंथों में व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान के गंभीर अध्येता और मौलिक व्याख्याता के रूप में हैं। एक ओर वे डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि, रीति विज्ञान और भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन के मौलिक व्याख्याता के रूप में हैं। दूसरी ओर साहित्य की चेतना, निज मुख मुकुर, लागो रंग हरि, कालिदास से साक्षात्कार, महाभारत का काव्यार्थ आदि में उनकी भावित्री प्रतिभा मुखर है। तंत्र कला और आस्वाद में भारतीय कला का वैशिष्ट रेखांकित हुआ है। भ्रमरानंद के पत्र और भ्रमरानंद का पचड़ा उनके व्यंग लेखन के प्रमाण है। पानी की पुकार उनका कविता संग्रह है और हिंदी की शब्द संपदा में हिंदी की शाब्दिक विरासत सुरक्षित हुई है। मिश्र जी के चिंतन, मनन और अनुशीलन का बहुलांश उनके लगभग 3 दर्जन निबंध संग्रहों में व्यवस्थित है। भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा, देशव्यापी अवमूल्यन, परंपरा बनाम आधुनिकता आदि तमाम विषयों पर मिश्र जी ने निर्भीक और अकुंठ भाव से लिखा है। इन संग्रहों में वे संग्रह विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनका संबंध ललित निबंध विधा से है। मिश्र जी ललित निबंध के उन नायकों में एक है। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, भोर का आवाहन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कौन तू फुलवा बीनन हारी, तमाल के झरोखे से अंगद की नियति शेफाली झर रही है, आदि संग्रहों को पढ़ते हुए लगता है कि उनकी ललित सर्जना का बीज शब्द लोक है। उनकी लोक संबंधी अवधारणा बहुत व्यापक है। जो भी दृष्टिगत संसार है वह लोक है। वे लोक को केवल मनुष्यों का समूह नहीं मानते, पशु पक्षी वृक्ष नदी पहाड़ सभी लोक हैं। वे लोक मानस के भाव लोक में प्रवेश कर संपूर्ण लोक को देखते परखते हैं। भोर का आवाहन का प्रारंभ एक भोजपुरी लोकगीत की पहली कड़ी से होता है। ए भोरे रे भैले भिनुसार, चिरैया एक बोले ले, मिरग बन चुंगे ले। पूरे गीत में भोर के स्मरण, पितरों के स्मरण, घर के अभाव के स्मरण के साथ साथ सुख समृद्धि संभावना भी है। ठाकुर चिरैया बोलने में पूरे लोक की प्रतिध्वनि है। मिश्र जी उसके बोलने को बृहत्तर अर्थ देते हुए मंगल की अवधारणा से जोड़ देते हैं। उसकी इस पतली आवाज में सुप्त मानवता ने अपने अस्तित्व की आदि प्रतिज्ञा दोहराई है कि वह बंधन में पड़ने के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए है। उस आवाज में अंबर का उर्ध्वंग अभिमान बोला है। इस आवाज में धरती की पार तितिक्षा लहराई है। स्पष्ट है कि हमारे लोकाचार अंततः लोक मंगल की कामना से पूरित है। कामना भोर तक सीमित नहीं है, संध्या भी इससे छूती नहीं है। संध्या का ध्यान निबंध में मिश्र जी ने विवाह से कुछ दिन पूर्व गाई जाने वाली सांध गीतियों में सबके मंगल की कामना को रेखांकित किया है। वे 2 गीतियों का विशेष उल्लेख करते हैं। एक में गाय के बछड़े के बढ़ने, दूध

समृद्धि का आह्वान है। दूसरी में भावी गृहस्थ अर्थात वर के लिए बड़े बूढ़ों के आशीर्वचन की अपेक्षा है। अमवा के नैया बाबू मोरे महुआ पुछलांगे, पुरैन पात स्पसरे कमल अस बिहसे को उद्धृत करते हुए मिश्र जी इन सारी उपमाओं में विविध मंगलों का सौंदर्य देख पाते हैं। मेरे राम का मुकुट भीज रहा है में जो लोक गीत केंद्रस्थ है, उसके राम सीता पौराणिक या ऐतिहासिक न होकर लोक की सृष्टि है। बरसात में इन वनवासियों को असुविधा होनी ही थी। लोक जीवन की माँ कौशल्या की चिंता जनित वेदना बहुत स्वाभाविक है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, तो राम घर लौटी। मिश्र जी कौशल्या को पूरे देश की माँ के रूप में देखते हैं। सीता समस्त स्त्री जात का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ न सामंती पृष्ठभूमि है, न अभिजात सोच, यहाँ लोक की दृष्टि है व्यापक और मार्मिक भी। यह लोक दृष्टि निबंधों में प्रायः समाहित है। केवल लोकगीत ही इसके संभाग नहीं है, लोक विश्वास, लोकाचार, लोक आदर्श भी सृजनात्मक हस्तक्षेप करते हैं। तुम चंदन हम पानी में लोक विश्वास है कि बिना देवता को चढ़ाए चंदन अपने

0: सीता को पूरे देश की माँ के रूप में देखते हैं। सीता समस्त स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ न सामंती पृष्ठभूमि है, न अभिजात सोच, यहाँ लोक की दृष्टि है, व्यापक और मार्मिक भी। यह लोक दृष्टि निबंधों में प्रायः समाहित है। केवल लोकगीत ही इसके संभाग नहीं है, लोक विश्वास, लोक आचार, लोक आदर्श भी सृजनात्मक हस्तक्षेप करते हैं। तुम चंदन हम पानी में लोक विश्वास है कि बिना देवता को चढ़ाए चंदन अपने माथे पर लगाना पाप है। मिश्र जी इसका भाष्य इस रूप में करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन संघर्ष में सुरभि तभी अर्जित होती है जब वो अर्पित भाव से संघर्षरत होता है। उन्हें अटपट लगने वाले लोक व्यवहार में लोक मंगल की प्रतीति होती है। कई अन्य निबंधों में भी लोक विश्वासों का उल्लेख है और वे हर बार घर परिवार समाज की मंगल कामना से जुड़ते हैं। आंगन का पंछी का प्रारंभ ही गौरैया और तुलसी से जुड़े जन विश्वासों से हुआ है। जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वो घर निर्वंश हो जाता है। तुलसी में आंगन की दुख दर्द बटाने की मन में बड़ी उत्कंठा है। मैंने सिल पहुंचाई में जहां बिना लोढ़े के परिछन के गृहिणी न मिलने का उल्लेख है, वहीं इसका फूटना घर के मालिक के लिए अशुभ माना गया है। यह मिश्र जी का कौशल है कि वे जन विश्वासों को वर्तमान संदर्भों, अंतर विरोधों और सरोकारों से जोड़ देते हैं। उन्होंने सिल को योजना की सिल का पर्याय बनाया, जिसे अधबूढ़ी जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी महकमा है। लेखक समय पर मित्र के यहाँ पत्थर की शिल्प नहीं पहुंचा पाया, वैसे ही ये महकमा जनता तक समय से योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाया। इस तरह लोक से थोड़ा बहुत लेकर विद्यानिवास जी ने लोक या पाठक वर्ग को बहुत कुछ लौटा दिया है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का आकलन है कि पंडित जी इसीलिए रसपुरुष हैं क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर लोक की भूमि से, उसकी विरासत से रस ग्रहण किया और उस रस को अपने कृतित्व के माधुर्य में घोलकर उसे और मधुर बनाते हुए पूरे लोक के बीच बांट दिया। विद्यानिवास जी ने लोक दृष्टि और अभिजात मानसिकता को कंट्रास्ट में रखकर दर्शाया है कि लोक की अनुभूति और सोच अधिक सार्थक और प्रासंगिक है। उनके अनुसार गांव में रहने वाला सब कुछ बहा ले जाने वाली सरिता में मैया का दुलार पाता है, श्रम का वारी लेने वाली मिट्टी की सोंधी उसात में प्रेसी का स्पर्श पाता है, अपने टूटे फूटे घर के भीठे को फोड़कर निकले हुए पीपल में वंश का गौरव पाता है। पर सहराती आदमी की न कोई माँ है, न प्रेमिका है, न पुत्र है, न पिता है, क्योंकि वो वीतराग है या और भी सही रूप में कृतराग है। गांव में लोक की सांस्कृतिक विरासत आज धूमिल पड़ती जा रही है। अमूल्यन तथा अमानवीकरण की परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। लोक के प्रति मिश्र जी का राग भाव किसी वाद या फैशन के अंतर्गत नहीं है, इसी लोक राग ने उनके निबंधों को लंबी उम्र दी है। महाकवि येट्स ने एक स्थान पर लिखा है कि जो व्यक्तिगत और व्यक्तिबद्ध है उसे सड़ते देर नहीं लगती, उसे सड़ने से बचाने के लिए बर्फ या नमक में भरकर सुरक्षित करना होता है। उसे सुरक्षित करने वाला नमक है लोक चित्त। लोक चित्त से जुड़ी रचना ही दीर्घायु और कालजयी होती है। मिश्र जी के अधिकतर ललित निबंध लोक चित्त के नमक से संरक्षित और सुरक्षित हैं। अपने एक आलेख में मिश्र जी ने आधुनिकता के विषय में लिखा है कि दी हुई वस्तु को अपने देश काल में रखकर उसकी मूल्यवत्ता नए सिरे से जांचना आधुनिकता की पहली शर्त है। इस कसौटी पर उनके अधिकतर ललित निबंध आधुनिक और प्रासंगिक हैं। निबंध को मरा हुआ माध्यम मानने वालों के लिए ये निबंध चुनौती हैं और प्रतिमान भी हैं।
1: विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा हमित आपसे वार्ता। पंडित विद्या निवास मिश्र जी का रचना संसार। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग

संसार। संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: काम कर रहे हैं। विशेष रूप से चर्चा इस समय जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कारपूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
2: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्रीराम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई।

0: प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। श्रोताओं, आप समय है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। आप कर रहे हैं आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा से आज के प्रोग्राम का आगाज। सभी मेरे प्यारे श्रोताओं को आपके रेडियो होस्ट सागर जगी का प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम अपनी मातृभूमि की गौरवशाली विरासत, स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय बलिदान, महान विभूतियों के प्रेरक जीवन और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को नमन करते हैं। आज 28 जून है और श्रोताओं, आज का दिन भारतीय राजनीति, प्रशासन और आर्थिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को स्मरण करने का अवसर देता है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जिन्हें हम पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जानते हैं, उनकी आज जयंती है। श्रोताओं, पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के एक करीम नगर जिले में हुआ था। वे केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं, बल्कि विद्वान, बहुभाषाविद, साहित्यकार और दूरदर्शी चिंतक भी थे। कहा जाता है कि एक दर्जन से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते थे और भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा साहित्य पर उनकी गहरी पकड़ थी। उनकी सादगी, शांत स्वभाव और गहन अध्ययन ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट पहचान दिलाई।

श्रोताओं ने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, वर्ष 1991 का समय भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में था और भारत के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां थी। ऐसे कठिन और दौर में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ऐसे निर्णय लिए, श्रोताओं, जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा ही बदल दी। उनके नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों की शुरुआत हुई। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने ऐसे आर्थिक सुधार लागू किए जिनके परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था ने नई गति प्राप्त की। आज भारत जिस मजबूत आर्थिक आधार पर आगे बढ़ रहा है, उसमें पीवी नरसिम्हा राव के साहसिक निर्णयों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

श्रोताओं, 1991 के वक्त आर्थिक सुधारों के साथ अनेक चुनौतियां भी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश का नेतृत्व किया। यही कारण कि उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। राजनीति के अतिरिक्त उनका साहित्य और शिक्षा के प्रति भी गहरा लगाव था। श्रोताओं, उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन और अनुवाद किया। वे मानते थे कि ज्ञान और शिक्षा ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका व्यक्तित्व हमें ये प्रेरणा देता है कि नेतृत्व केवल सत्ता का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, ज्ञान और राष्ट्रहित में कठिन निर्णय लेने का भी नाम है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की और तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब पीवी नरसिम्हा राव का जीवन हमें ये संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियां ही महान नेतृत्व की पहचान बनती है।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। हम बात कर रहे थे श्रोताओं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। श्रोताओं राष्ट्र निर्माण के लिए साहसिक निर्णय, ईमानदार प्रयास और दीर्घकालिक सोच अत्यंत आवश्यक है। आइए उनकी जयंती पर हम सभी ये संकल्प लें कि अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त, समृद्ध और विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं प्रेरणादायी विचारों के साथ हम पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को अपनी उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि एवं शत-शत नमन अर्पित करते हैं।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से।

श्रोताओं, पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उनको शत शत नमन अर्पित करते हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है।

आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम गाने नए पुराने का। पेश है हिंदी फिल्म जगत के वो अनमोल गीत जिन्होंने दशकों तक दिलों पर राज किया है। कभी रोमांस की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी दोस्ती की मस्ती, हर एहसास को बखूबी बयां करते हैं गीत आज फिर गूंजेंगे आपकी धड़कनों में।

राजू सिंह की संगीत निर्देशन में कुमार के लिखे हुए गीत को आपने सुना, फिल्म रासे। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल के। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो कि है फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से, किशोर कुमार की आवाज में, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपने फिल्म दुलारी से गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। एक गीत आपने सुना फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान की आवाज में, जिसको लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत था ए आर रहमान का।

आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत फिल्म हावड़ा ब्रिज से। गीतकार थे कमर जलालाबादी और संगीतकार ओपी नैयर। आइए अब सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से ये गीत मोहन कनन और शिल्पा राव की आवाजों में, जिसको लिखा है इरशाद कामिल ने और उसमें संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे थे गीत फिल्म कॉकटेल से। आवाज़ें थी मोहन करण और शिल्पा राव की। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार प्रीतम। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए पुराने यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो चुके हैं श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का।

ये गम नहीं, तेरे गीत हर पल मेरे संग हैं, कहीं तेरी आवाज बन गई है मेरी सांसों की तान, जैसे हर धुन में बसा हो बस तेरा नाम। आप सुन रहे थे फिल्म दिल तो पागल है से गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, जिसको लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था उत्तम सिंह का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मैंने प्यार किया से एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। गीतकार हैं असत भोपाली और संगीतकार राम लक्ष्मण।

ये धड़कनें, ये सन्नाटे और ये मौसम सब कुछ कह रहे हैं, बस अब इस गाने की कमी है।

कुछ सोचता हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलता हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। आप सुन रहे थे फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। इसी के साथ ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे।

0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है। एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headline.

के सदर पैट्रिक हेरमेनी के साथ वफ्त की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मौके का समंदर बनाना है। वजीर आजम मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी कुवतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अक्वामी मैच में

0: में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज जहां शराकतदारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वक्त की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत, मालियात, खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीरे आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में यूपीआई का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशेल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हर्मिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत, गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तई अपने अहद का इदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वज़ीर आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात, नीज नीलमू मईशत, आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई, समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और स्माल आइलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तई उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदबंद हैं, नेज आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वज़ीर आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैन अल-अक़वामी इदारे हम असर हकायक की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के तई अपने अहद का इदा किया।
1: सेशेल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियालिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत का विजन महासागर के नजरिए में पिन्हा है जो इस बात को तस्लीम करता है कि हमारा मुस्तकबिल एक दूसरे से मुंसलिक और एक दूसरे पर मुनहसिर है।
1: वी बिलीव द इंडियन ओशन इज अवर शेयर्ड होम, इट्स सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आर अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही भावना हमारे महासागर विजन का आधार है।
0: وزیر اعظم نے کہا کہ قومی اسمبلی سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے سب کے سامنے کھڑا ہونا ایک خصوصی

0: एजाज है। इससे कबल दिन में सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजने के लिए उन्होंने सेशेल्स के सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी मशरकी अफ्रीका के इस जजीरानुमा मुल्क के 3 रोजा दौरे पर गुज़िश्ता रोज विक्टोरिया पहुंचे हैं। इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अमित शाह, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और जितेंद्र सिंह समेत बहुत से मरकजी वजरा ने माहौलियाती तहफ्फुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए वज़ीर आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज से नवाजे जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के दरमियान बातचीत में बाहमी ताल्लुकात के तमाम शोबों का अहाता किया गया। विक्टोरिया में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब मिस्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने सेहत, तालीम, सलाहियत साजी, डिजिटल तब्दीली, पायदार तरक्की, समाजी बुनियादी ढांचे, काबिले तजदीद तवानाई, समंदरी तहफ्फुज और दिफा के शोबों में तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा एहसासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ नुकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ तआवुन करने पर मुल्क के हर शहरी के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि ये इज्तिमाई जज्बा कौम को मजीद मुस्तहकम करेगा और उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्हें बेबुनियाद करार दिया। मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूसरों की जानिब उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अंदरून मुल्क देखना चाहिए और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुस के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास तनूरा में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाजह रहे कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गईं जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज कर गया है। पेरिस में एफिल

0: टावर और लुरे म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा दो रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुज़वी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरतेहाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निज देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांवों के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। अहमदाबाद में आज ABC मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में खवातीन के T20 आलमी कप में अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। और मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: This is Akashwani
2: Radio Scope, the National Science Magazine program.
3: Good evening and welcome to the June edition of the National Science Magazine Radio Scope, to your monthly journey into the discoveries, wonders and benefits of science. Tonight we'll dive into the pressing issues shaping our environment and oceans, the latest breakthroughs in technology and health that impact us all. Joining us are distinguished voices from across the community sharing their valuable insights. June was packed with important observances in India and worldwide. June 1st marked the Global Day of Parents, and India's Ministry of Women and Child Development spotlighted family-centric welfare schemes like Mission Vatsalya, reminding us that strong families build strong nations. On the same day, India, the world's largest milk producer, celebrated World Milk Day, showcasing innovations in sustainable dairy farming.

0: आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ तबला रिसाइटल बाय पंडित सुधीर पांडे। पंडित

धक धक धक धक तुन्ना कटधा कटधा कटजन नडान तक धा तिन्ना कट तक तक धरक धरक धरक धरक धा तक धा धरक धरक धा तक धा धरक धरक धा तक धा धरक धरक धा तक धा धरक धरक धा तक धा धरक धरक धा तक धा धरक धरक धा तक धा

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mrudangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mrudangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mrudangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat mrudangavidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एनएस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री M.K.R. प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एनएस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: Sri N.S. Kalyana Raman has accompanied several eminent musicians including Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankaranarayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
2: Sri N.S. Kalyana Raman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada

0: आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
1: He is a top-grade artist of Akashvani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashvani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
2: Aaj ke karyakram mein Sri N.S. Kalyanaraman mridangam par अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
1: Tonight, श्री N.S. Kalyanaraman begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम।

0: आप रविवास श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व

0: के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath aarthik samruddhi bhi badhe, jahan hamari saajedari aakar nahi aapasi samman aur vishwas par aadharit ho aur jahan hum har desh ke पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National